ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में

0: सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय 6:05:16 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम है वंदना।

0: 6:25 हुए हैं और हमारा प्रोग्राम है प्रकाश किरण।
1: साहित्य संगीत कला विहीन

जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला का ज्ञान नहीं होता, वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अंतर यह है कि ऐसा मनुष्य पशु होते हुए भी घास नहीं खाता और जीवित रहता है। कवि का कथन अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि कला विहीन जीवन कभी सुसंस्कृत नहीं हो सकता, संस्कृति विहीन मनुष्य महान पद का अधिकारी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में महत्ता के लिए क्या आवश्यक है, भर्तृहरि कहते हैं।

जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य इस विनाशशील संसार में पृथ्वी पर बोझ ही बने रहते हैं। वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान घूमते हैं। विचार पूर्वक देखने पर प्रत्येक गुण एक दूसरे से गुथा हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य का जीवन सफल कब कहा जाता है? जब वो कुछ गुणों को धारण कर लेता है। भर्तृहरि कहते हैं, विपदे धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदा सेवाक पटुता युधि विक्रमः यशसे चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृते सेद्धमिदं हि महात्मनाम। विपत्ति में धीरज रखना, समृद्धि प्राप्त हो जाने पर सहनशील होना, सभा में वाणी की चतुरता दिखाना, युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करना, यश के कार्यों में रुचि लेना, शास्त्रों का सतत अध्ययन का व्यसन होना, ये गुण महान आत्माओं में प्रकृति से सिद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे वह मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित होगा, महान कहलाएगा। जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए कवि ने प्राकृतिक स्वभाव के गुणों का भी निर्देश किया है। महान मनुष्य का सौंदर्य क्या है? महान मनुष्य से ही समाज सुखी रह सकता है। उन गुणों की ओर भर्तृहरि कहते हैं, करेश लाघ्यस्त्याग शिरसे गुरु पाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजये भुजयोर वीर्यमतुलम् हृदय स्वस्था वृत्ति श्रुतिरधिगतैका व्रतफलम् विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिम।

0: मनुष्य संपत्ति से महान नहीं होता। आज मनुष्य धन के लालच में अपना महत्व खो रहा है। महान वह है जिसके हाथ में प्रशंसनीय त्याग है, सिर पर अपने से बड़ों का प्रेम रूप आशीर्वाद है, मुख में सत्यवाणी है, अतुलनीय विजय प्राप्त करने वाली वीरता भुजाओं में है, हृदय में स्वस्थ विचार है, ज्ञान प्राप्ति की एकमात्र सफलता है। ऐसे व्यक्ति यदि संपत्तिहीन भी हैं तो भी ये गुण ही उनके आभूषण हैं। संपत् सुमहताम चित्तम भवत्युत्पलकोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्तिशील होने पर महान मनुष्य का हृदय कमल के समान कोमल हो जाता है, अर्थात सुगंध विस्तार की भावना, दूसरों को अपने सौंदर्य से प्रसन्नता देना आदि कमल के गुणों के समान विनम्रता, परोपकार भावना, क्षमा आदि गुण आ जाते हैं। विपत्ति के आने पर पर्वत के समान कठोर हो जाते हैं। महान मनुष्य संघर्ष से नहीं डरते, संघर्ष में विचलित नहीं होते, पर्वत के समान अडिग रहते हैं। मनुष्यता के विकास के लिए विनम्रता ही आवश्यक है, विनम्र ही परोपकारी होता है।
1: श्रोताओं, प्रकाश किरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भर्तृहरि के नीति शतक से पाठ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, ये लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार होंगे अनुराधा मराठे, संगीत सतीश भाटिया का होगा। कार्यक्रम खेती की बातें का समय रहेगा प्रातः 6:45, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता फसल चक्र का महत्व। वार्ताकार होंगे रतन लाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का समय रहेगा प्रातः 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे लघु वार्ता एनीमिया कारण और उपचार विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अलका सेन। कार्यक्रम आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर। श्रोताओं, प्रातः 9:45 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युगल लोक गीत। कलाकार होंगे अनुपमा सक्सेना और संजय उपाध्याय, और कलाकार होंगे आशा कटारा। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं प्रातः 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एनवी पटवर्धन से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग जोग। दिन में 11:00 हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी मन की बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो समय याद रखिएगा दिन में 11:00 कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लावनी। कलाकार होंगे ओम प्रकाश अमर

श्रोताओं, दिन में 1:15 पर हमारे नन्हे मुन्ने का अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल मंडल, जिसमें आज होगी चर्चा कारगिल विजय दिवस विषय पर, होगी रोचक जानकारी यह दिल मांगे मोर, साथ ही होगी कहानी मीठी बोली, कहानीकार होंगी अर्चना सिंघल, सुनिएगा बाल गीत और चलते चलते हंसी सबसे सस्ती और असरदार दवा। श्रोताओं, 1:45 पर समय रहेगा सुगम संगीत का। कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें जगजीत सिंह के स्वर में। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विषय पर। कार्यक्रम खेल दुनिया, जिसमें डिजिटल कोच बनता एआई विषय पर होगी जानकारी। संभावनाएं सेगमेंट में रक्षा क्षेत्र में करियर के विषय में जानकारी लीजिएगा और सुनिएगा वार्ता, जिसका विषय होगा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में मैंग्रोव की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्रीजल नगाइच। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 6:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। कलाकार हैं अनुराधा मराठे, संगीत सतीश भाटिया का।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। कलाकार थी अनुराधा मराठी, संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 6:45 हुए हैं, वक्त हो चुका है कार्यक्रम खेती की बातें का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में वार्ता फसल चक्र का महत्व। वार्ताकार हैं रतन लाल।
1: किसान भाइयों, आप भली बात जानते हैं कि खेतों में किसी निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर ऐसे क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरता का हास न हो, फसल चक्र या सस्यावर्तन कहलाता है। आज हम आपसे फसल चक्र के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। फसल चक्र एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय अपनाए जा सकते हैं। फसल चक्र अपनाने से लाभ ही लाभ हैं। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, रोग व कीटों के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं, खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है, दलहनी फसलों के कारण मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा ठीक बनी रहती है तथा जैव पदार्थों की कमी नहीं हो पाती है, नत्रजन की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ती है तथा फसल उत्पादन में लागत कम आती है, भूमि का कटाव रोकने में भी सहायक है एवं उपलब्ध साधनों जैसे बीज, उर्वरक, जल तथा श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। घरेलू तथा बाजार की अनाज सब्जी की पूर्ति होती है एवं मुख्य बात, कई फसल आने से वर्ष भर आमदनी होती रहती है। फसल चक्र के कुछ सिद्धांत हैं जिनका ज्ञान आवश्यक है, जैसे उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए। इस प्रकार फसल बोने से मृदा की भिन्न भिन्न परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी तथा उनको पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता रहेगा। जैसे कपास व अरहर के बाद मटर व गेहूं बोना, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। इससे पिछली फसल की बची हुई खाद का सदुपयोग हो जाता है और आपको खेत में अधिक खाद नहीं देनी पड़ती है। जैसे आलू के बाद प्याज लगाएं, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए, क्योंकि फलीदार फसलों के बाद द्वारा वायुमंडल की नत्रजन का स्थिरीकरण संस्थापन किया जाता है। इसके कटने के बाद बिना फलीदार फसलें भूमि में शेष बची नत्रजन का उपयोग कर लेती हैं, जैसे मूंग के बाद गेहूं एवं मटर के बाद प्याज। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से मृदा की संरचना ठीक बनी रहती है तथा फसल उत्पादन में लागत भी कम आती है। जैसे मक्का के बाद जौ या चना बोना चाहिए। अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद कम जल चाहने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सिंचाई के साधनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता तथा भूमि में लगातार अधिक जल बने रहने के कारण वायु संचार तथा जीवाणुओं की क्रियाओं में पड़ने वाली बाधाओं से बचा जा सकता है। जैसे धान के बाद चना या मटर या मसूर बोना चाहिए। कृषि साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र में फसलों का समावेश, सिंचाई, उर्वरक, बीज, मजदूर तथा आपकी स्वयं की आवश्यकता की वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, चारा व सब्जी को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिसके परजीवी कीट तथा बीमारी फैलाने वाले कीटाणु समान न हो। किसान भाइयों, अब आपसे फसल चक्र में फसलों के चुनाव पर प्रभाव डालने वाले कारक या फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं, जिनमें मुख्यतः वहाँ की जलवायु, भूमि, सिंचाई के साधन, कृषि श्रमिकों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताएं, बाजार की मांग, आवागमन के साधन, खेती का प्रकार, सामाजिक रीति रिवाज, पूंजी या धन की उपलब्धता एवं स्वयं किसान की फसल उगाने की क्षमता मुख्य है। इन पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु सबसे मुख्य है, जिसमें तापक्रम, वातावरण की नमी तथा वर्षा जलवायु के मुख्य तत्व होते हैं। फसलों के अंकुरण, वृद्धि तथा पकने के लिए विभिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक प्रकार की जलवायु न मिलने पर फसल में दाना तथा फल नहीं लगते हैं। जलवायु की विषमता के कारण सभी फसलें एक ही स्थान पर नहीं उगाई जा सकती हैं। जैसे फूलगोभी की फसल को गर्म स्थानों पर नहीं उगा सकते हैं, जबकि धान गर्म व तर जलवायु में आसानी से उगाई जा सकती है। जहां तक भूमि का प्रश्न है, भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों का फसल की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे चिकनी मिट्टी में आलू, मूंगफली, ऊसर भूमि में आलू, टमाटर तथा बलुई भूमि में धान, गन्ना सफलतापूर्वक नहीं उगाए जा सकते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी में धान व कपास, ऊसर भूमि में धान व ढेंचा तथा बलुई भूमि में आलू व मूंगफली फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। सिंचाई के साधन होने पर कोई भी फसल ले सकते हैं, लेकिन असिंचित दशा में वही फसलें ली जाती हैं जिनकी जल मांग बहुत कम है, जैसे अंडी, ज्वार, बाजरा आदि। ट्यूबवेल होने पर जल्दी जल्दी पानी चाहने वाली फसलें जैसे सब्जी उगा सकते हैं, जबकि नहर का साधन होने पर देर से पानी चाहने वाली फसलों को उगाया जाना चाहिए, जैसे मटर व गेहूं। कृषि हेतु श्रमिकों की आवश्यकता वर्ष भर पशु तथा फसलों के कार्य के लिए पड़ती है। यदि श्रमिक व पशु किसान के पास उपलब्ध हैं, तो वे आसानी से किसी भी फसल को अपने खेत में उगा सकते हैं, अन्यथा ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें पशु तथा श्रम की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मटर, सरसों आदि। घरेलू आवश्यकताओं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अपने घर के लिए दाल, अनाज, तेल, रुई, चारा तथा सब्जी आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः सभी प्रकार की फसलें उगानी चाहिए, चाहे क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार कम या अधिक रखा जाए। इसके अतिरिक्त फसल का चुनाव बाजार की मांग पर निर्भर करता है। जैसे गन्ना मिल के पास गन्ना, कपास मिल के पास कपास की मांग अधिक रहती है। आवागमन के साधन भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। खेत से मंडी या शहर के लिए अच्छे आवागमन साधन होने पर सब्जियां तथा चारे की फसल की खेती लाभदायक है। पूंजी या धन की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि किसान के पास धन का अभाव है, तो वे अधिक लागत वाली फसलें जैसे गन्ना या आलू नहीं लगा सकता, जिनमें खास निराई गुड़ाई, सिंचाई आदि की व्यवस्था में धन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे मुख्य बात, किसान भाइयों, आपके स्वयं की फसल उगाने की क्षमता पर निर्भर है। जिन फसलों को उगाने का आपको ज्ञान हो, वही फसलें फसल चक्र में उगानी चाहिए। कुछ फसलों की खेती के लिए सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती है, जैसे तंबाकू आदि। फसल चक्र को हम तीन फसलों रबी, खरीफ व जायद के लिए अपनाते हैं, जिनमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय फसल चक्र होते हैं। एक वर्षीय सघन फसल चक्र में कोई भी चक्र अपना सकते हैं, जैसे मक्का, आलू या तोरिया, गेहूं, मूंग या लोबिया, मक्का, आलू, आलू खरबूजा, धान, तोरिया, गेहूं, मूंग या लोबिया, या मक्का, आलू, प्याज या मूंग, मक्का, आलू, तंबाकू, ज्वार, चारा, आलू या तोरिया, गेहूं, मूंग, मक्का, उर्द, आलू, सूरजमुखी, मक्का, उर्द, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू, कुकरबिट्स यानी करेला, तरबूज, खरबूज, खीरा आदि। द्विवर्षीय फसल चक्र में कपास, मटर, गेहूं, कपास, मटर, बाजरा, चना, ज्वार, चना, बाजरा, चना, मक्का, आलू, गन्ना, धान, मटर, गन्ना, मक्का, आलू, भिंडी, टमाटर, बाजरा, गेहूं, बाजरा, मटर। बहुवर्षीय फसल चक्र में हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी, कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, सनई, गेहूं, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं। किसान भाइयों, सस्य योजना या क्रॉपिंग स्कीम के अनुसार निश्चित समय में अलग अलग खेतों में फसल चक्रों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है कि अधिक उपज मिल सके और भूमि की उर्वरा शक्ति का हास न हो। इसके अतिरिक्त मिलवा खेती तथा सघन खेती भी अपनाई जा सकती है। एक खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना ही मिलवा खेती कहलाता है। इसमें मिश्रण की फसलों की बुवाई एक साथ बीज को मिलाकर पंक्तियों में अथवा छटवा विधि से की जाती है। मिश्रण की फसलों के पकने का समय या तो एक ही होता है, जैसे गेहूं या चना या गेहूं जौ या अलग अलग जैसे अरहर ज्वार। सेचर विधि के में मिश्रण के बीज आपस में मिलाए नहीं जाते, बल्कि अलग अलग पंक्तियों में बोए जाते हैं, जैसे सरसों की दो पंक्तियों के बीच गेहूं की पांच पंक्तियां या अरहर की दो पंक्तियों के बीच पांच, मूंगफली की

0: पंक्तियां बोते हैं। मुख्य फसल को बचाने हेतु रक्षक फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे गन्ना के खेत के चारों ओर पटसन बोना या अरहर बोना। मिश्रित फसल के बहुत लाभ हैं, जैसे प्रतिकूल मौसम के बावजूद एक न एक फसल मिल जाती है, भूमि का पूर्ण उपयोग होता है, अधिक उपज मिलती है, भूमि में कटाव में कमी होती है, खरपतवारों का संघर्ष कम तथा भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, फसलों के उत्पादन खर्च में भी कमी आती है। श्रम व पूंजी के उचित उपयोग के साथ ही सीमित क्षेत्रफल में अधिक फसलें ली जा सकती हैं। मिश्रित फसल से हानियां भी हैं, जैसे शुद्ध बीज प्राप्त होने में असुविधा होती है, कटाई हेतु कटाई मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते, फसल पर कीटनाशी दवा छिड़कने में असुविधा व खरपतवार नियंत्रण में कठिनाई आती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे वार्ता फसल चक्र का महत्व। वार्ताकार थे रतन।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
2: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने एकादशवादने स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं षट्त्रिंशदधिकैकशतं संस्करणं भविता।

0: अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्रीकार्यालयः सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं सार्धचतुर्वादने दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। विंशति प्रतिविंशतेः पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत

0: and Romania. During the visit, the President held high-level engagements aimed at strengthening India's strategic partnerships with the three European countries. The visit marked several historic milestones, including the first-ever state visit by an Indian President to Moldova and North Macedonia, and the first state visit by an Indian President to Romania in over three decades. In squash, top seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Rukaiya Salem 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara on the Lake, Canada. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता, एनीमिया कारण और उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर अलका सेन।
2: एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसको कि हम ये देखते हैं कि ये किन्हीं तमाम कारणों से हमारे हिंदुस्तान में व्याप्त है। एनीमिया का मतलब है रक्त की कमी। रक्त की कमी इसका एक मानक है जिसको कि हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम परसेंट से कम होती है तो उस व्यक्ति को एनीमिक कहा जाता है, यानी कि वो व्यक्ति में रक्त की कमी मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष में इसका मुख्य कारण है कि भारतवासी शाकाहारी होते हैं और इसके कई कारण होते हैं। रक्त की कमी मुख्यतः तीन कारणों से होती है, या तो शरीर में रक्त बनना कम हो जाए या बंद हो जाए, या शरीर से रक्त लगातार किन्हीं अंगों के द्वारा बहता रहे, या बन भी ठीक रहा हो, निकल भी ना रहा हो, लेकिन शरीर के अंदर किन्हीं अंगों में उनका उपयोग अधिक हो जाए। कारण बहुत से हैं जिनको के चिकित्सक अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और रक्त में विभिन्न प्रकार की जांचों से ये पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में एनीमिया या रक्त की कमी क्यों है, और इसका उपचार भी इनके कारणों के अनुसार किया जाता है। महिलाओं में रक्त की कमी मुख्यतः खान पान में लौह तत्व की कमी के कारण और मासिक धर्म अधिक होने के कारण या पाचन शक्ति सही न होने के कारण, जिसमें कि महिला ठीक पोषक तत्व ले रही है लेकिन फिर भी शरीर के अंग उस लौह तत्व को अपने अंदर न लेकर और शरीर में रक्त की कमी पहुंचा रहे हैं। महिलाओं में रक्त की कमी के और भी कई कारण हैं, जिसमें बार बार प्रेगनेंसीज का होना, बार बार गर्भपात होना, और महिलाओं पर उतना ध्यान, उनके खाने पीने पर उतना ध्यान न देना जितना कि एक नॉर्मल घर के सदस्य में दिया जाता है। मैं अपने श्रोताओं को एक विशेष रूप से ये बात बता देना चाहूंगी कि रक्त की कमी को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों के खान पीन पर, उनके पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आजकल जंक फूड और जो फास्ट फूड का चलन है उसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए, क्योंकि इन फास्ट फूड में पोषक तत्वों की बेहद कमी होती है और मैदा के बेस होने के कारण ये जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं ये शरीर की पाचन शक्ति को बहुत कमजोर बना देते हैं। यदि महिलाएं और घर के बड़े सदस्य इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों में रक्त की कमी का ध्यान रख सकते हैं। और महिलाओं की रक्त की कमी के लिए सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि दो बच्चों के बीच में इतना अंतर रहे ताकि पहली डिलीवरी, पहले प्रसव के बाद महिला पूरी तरह से रिकवर कर जाए और दूसरी प्रेगनेंसी के लिए, दूसरे प्रसव के लिए वो शारीरिक रूप से पूर्णतः तैयार हो जाए। महिलाओं में मासिक चक्र अधिक और अनियमित होने के कारण भी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर महिला को लगे कि उसका मासिक चक्र अनियमित है या मासिक धर्म में रक्त का प्रवाह ज्यादा है और ज्यादा दिन तक होता है, तो उसे तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और ये चाहिए कि उसको

0: ही उपचार किया जाए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्त की कमी एक ऐसी बीमारी की जड़ है जो कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियों का आह्वान करती है। इसलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि आप अपने पोषक तत्वों पर ध्यान रखिए और अपने चिकित्सक को सही समय पर सलाह लीजिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रही थी वार्ता एनीमिया कारण और उपचार। वार्ताकार थी डॉक्टर अलका सेन। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, ये सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रही थी संवेद स्वर में देश गान। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पल।
1: कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण, देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद CJP ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी CJP के बीच कल तीसरे दौर की वार्ता में CJP ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह तथा CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने CJP की इस मांग को मान लिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई FIR दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और FIR की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी का ताकतें लाभ ना उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी दांव पेच में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने

0: कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने कल संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी।
1: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित न्यू एसआईटी टीम का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें आईजी किरण एस के अलावा डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। इससे पहले न्यू एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेस वे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
3: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत

0: भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है।
1: माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर सूचनाएं। तो सूचनाओं के क्रम में सबसे पहले सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम पिंकी, पत्नी विवेक, उम्र 30 वर्ष, निवासी नगला महादेव थाना हरिपर्वत। पिंकी की उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, शरीर सामान्य है, रंग गोरा है। पिंकी का चेहरा सामान्य है, आंखें काली सामान्य। पिंकी ने काले रंग का गाउन और गुलाबी रंग का दुपट्टा पहना हुआ है। पिंकी 16 जून 2026 से अपने घर से लापता है। पिंकी की कोई भी सूचना मिलने पर थाना हरिपर्वत को सूचित कर सकते हैं।

एक और सूचना गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में। गुमशुदा का नाम राहुल, पुत्र भगवान, उम्र 21 वर्ष, निवासी मोती स्वेर वाली गली 61/49 रसूलपुर सराय ख्वाजा थाना शाहगंज आगरा। राहुल की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, शरीर 71

रंग गोरा और चेहरा गोल है। राहुल की आंखें मध्यम हैं, बाल लंबे और काले हैं। राहुल ने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। राहुल के साथ लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और अपने कपड़े हैं। राहुल 17 जून 2026 दिन के 11 बजे से लापता हैं। आपकी कोई भी सूचना मिलने पर थाना शाहगंज आगरा को सूचित कर सकते हैं। श्रोताओं, अंतिम सूचना गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में। गुमशुदा का नाम ज्योति, पत्नी संजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोपालपुरा, नई बस्ती, ग्वालियर, थाना सदर बाजार, आगरा। ज्योति की उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट, आंखें व शरीर सामान्य हैं। ज्योति ने साड़ी पहनी हुई है। ज्योति 30 जून 2026 से लापता है। ज्योति की कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर आगरा को सूचित कर सकते हैं। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। सूचनाएं जारी रहेंगी।

श्रोताओं, सूचनाओं के क्रम में आइए सुनते हैं अगली सूचना। श्रावण मास के स्वागत में सज रहे शिवालय, अर्पित होंगी हजारों कावड़, गूंजेंगे जय घोष। श्रोताओं, भगवान शिव का परम प्रिय श्रावण मास 30 जुलाई से शुरू होगा और 3 अगस्त को श्रावण मास का प्रथम सोमवार होगा। इसके स्वागत के लिए जिले के प्राचीन शिवालयों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों में आकर्षक विशेष सजावट की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए अभिषेक और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर करने की तैयारियां की जा रही हैं। सभी प्रमुख शिवालयों में पूरे महीने में 8 से 10 हजार कांवड़ अर्पित की जाएंगी। शहर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान रहेगा। हजारों कांवड़ होंगी अर्पित। श्रावण मास में भगवान शिव को कांवड़ अर्पित करने की विशेष मान्यता है। शहर में राजेश्वर महादेव, बालकेश्वर महादेव, कैलाश महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव, रावली महादेव और श्रीमन मनकामेश्वर महादेव के साथ बटेश्वर समेत कई प्राचीन शिवालयों पर कांवड़ अर्पित की जाती हैं। सबसे अधिक कांवड़ बटेश्वर, कैलाश, बालकेश्वर, राजेश्वर महादेव मंदिरों पर अर्पित की जाती हैं। कैलाश महादेव पर श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर लगने वाले मेले से पूर्व करीब 1000 कांवड़ अर्पित की जाती हैं। श्री मनकामेश्वर महादेव का होगा रजत वैभव श्रृंगार। श्रोताओं, श्रावण मास में रावतपाड़ा स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का अलौकिक रजत श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेगा। सावन के प्रथम दिन बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ को नक्काशीदार रजत आवरण युक्त शैया, पादुका, नवीन रजत दंड और विशेष रूप से निर्मित जलहरी समर्पित की जाएगी। मंदिर महंत ने बताया कि पूरे श्रावण मास में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन का क्रम चलेगा। मठ प्रशासक ने बताया कि पूर्व में अर्पित चांदी की शैया व पादुका का जीर्णोद्धार कर नया रजत आवरण तैयार कराया गया है। रजत दंड पर चांदी के नंदी महाराज विराजमान हैं। नई जलहरी से रुद्राभिषेक का जल व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन, रुद्राभिषेक, सुरक्षा, स्वच्छता और

यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरे माह रहेंगे धार्मिक आयोजन। श्रावण में शहर के शिवालयों में रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय जाप, शिव महिग्नी स्तोत्र पाठ, भजन संध्या, महाआरती और प्रसाद वितरण जैसे आयोजन होंगे। सोमवार को लगेंगे मेले। 3 अगस्त को राजेश्वर महादेव मंदिर से शुरुआत होगी। 10 अगस्त को कैलाश महादेव मंदिर पर मेला लगेगा। इससे पूर्व रात्रि में शहर के कोनों पर स्थित महादेव मंदिरों की पैदल परिक्रमा लगेगी। इस दिन स्थानीय अवकाश भी है। अंतिम सोमवार 24 अगस्त पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में मेला लगेगा। तो श्रोताओं, श्रावण मास में सभी तैयार रहिएगा, इन भव्य आयोजनों का आनंद लीजिए। और अब सुनते हैं अगली सूचना। आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम। श्रोताओं, मुख्यमंत्री रविवार को सुबह 10:30 पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में यूपी की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। खंडारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में रविवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 10:30 पर सर्किट हाउस से सड़क मार्ग से यमुना किनारा विजयनगर होते हुए खंडारी स्थित विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे। 11:30 पर विश्वविद्यालय से केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। यहां हेलीकॉप्टर से मैनपुरी के लिए उड़ान भरेंगे। शनिवार को पूरे दिन विश्वविद्यालय परिसर में तैयारियां चलती रहीं। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, प्रदर्शनी क्षेत्र और सुरक्षा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। प्रशासन के अधिकारी लगे रहे। कुलपति निर्देशन में कुल सचिव और उप कुल सचिव ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। खंडारी परिसर में विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। श्रोताओं, सूचनाएं और भी हैं, लेकिन सूचनाएं सुनने से पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम आसपास में। इस प्यारे से गीत को आपने सुना शर्मा बंधुओं के स्वर में, और इस गीत के बाद श्रोताओं ये फिर से शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। तो अगली सूचना के अनुसार शमशाबाद टाउन स्टेशन पर थर्ड लूप लाइन शुरू, ट्रेन ट्रैफिक संभालने में मिलेगी मदद। श्रोताओं, मंडल की रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने की ओर रेलवे को एक उपलब्धि मिली है। भांडे टावा रेलखंड के शमशाबाद टाउन स्टेशन पर थर्ड लूप लाइन को शुरू कर दिया गया है। नई लूप लाइन के साथ स्टेशन की परिचालन क्षमता भी बढ़ गई है। अब यहां ट्रेनों के रूटों की संख्या 24 से बढ़कर 40 हो गई है। इसके लिए दो नए सिग्नल लगाए गए, चार पुराने सिग्नलों को स्थानांतरित किया गया, चार नई TWS पॉइंट मशीनें लगाई गई और एक नई इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई प्रणाली भी स्थापित की गई। हिताची इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जरूरी बदलाव भी किए गए। नई लूप लाइन के शुरू होने से स्टेशन पर ट्रेनों की क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग आसान हो जाएगी। इससे मंडल में रेल यातायात का प्रबंधन और भी बेहतर होगा, ट्रेन ट्रैफिक की संभालने में मदद मिलेगी। और श्रोताओं, एक और सूचना, 27 से फिर शुरू होगा वर्षा का दौर। श्रोताओं, शहर में 27 जुलाई से वर्षा का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और मजबूत होने और मानसूनी प्रवाह बढ़ने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने

रविवार को गरज के साथ बौछार पड़ने की पूर्वानुमान जताया है। शहर में शनिवार को सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर में सूरज निकला लेकिन कुछ ही देर में बादल घिर आए। शाम तक मौसम ऐसे ही बना रहा, दिन में हल्की हवा चलती रही, इससे लोगों को उमस से राहत मिली। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिक तापमान 2.00 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बौछार पड़ सकती है, तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं, अब गर्मी से थोड़ी सी निजात हमें मिली है और मन जो है हमारा बेचैन था गर्मी से, उसमें भी हमें बड़ी राहत मिली है। तो आइए इसी खुशी में आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद आइए फिर से रुख करते हैं सूचनाओं की ओर। श्रोताओं, आज है कारगिल विजय दिवस, तो आइए नमन करते हैं वीरों के अदम्य साहस को। श्रोताओं, यह ब्रज क्षेत्र है जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। यहां की माटी में लड़ाके भी हैं, देश की आन बान शान के लिए हंसते हुए प्राण न्योछावर कर देते हैं। कारगिल युद्ध में आगरा के 3 दर्जन सैनिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। वीर सपूतों के अदम्य साहस से कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया गया। बहादुरी ऐसी कि दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 27 साल बाद भी वीरों के स्मारक पर लोग जुटते हैं, बच्चों को उनकी निडरता और अदम्य साहस की कहानियां सुनाई जाती हैं। तो श्रोताओं, आइए हम भी जानते हैं उन्हीं वीरों में से कुछ वीर जवानों के बारे में। जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर ने बताया कि कारगिल युद्ध की शुरुआत 4 मई 1999 से शुरू हुई थी। वह मेजर पद पर थे। ये ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1 इंच भी भूमि दुश्मनों को देने से इनकार कर दिया। जवानों ने जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 27 साल के बाद भी युद्ध से संबंधित यादें ताजा हो जाती हैं। भारतीय सेना की रणनीति बेहतरीन थी। पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। लिया प्रण चली जाए जान, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। दुर्गा पैलेस सैनिक बिहार निवासी करण सिंह 8 जुलाई 1985 को भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। उन्हें 30 अक्टूबर 1999 को प्रतापपुरा सेक्टर में चटनी ब्रिगेडियर को काली पहाड़ी पर तैनाती मिली। 10 जवानों के साथ ड्यूटी थी। यहां से पाकिस्तान की ओर बहने वाली काली नदी पर आतंकियों की मूवमेंट मिली। पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 4 घंटे तक चले अभियान में 4 आतंकियों को ढेर किया गया। 2 भारतीय जवान बलिदान हो गए। बकरी चराने वालों ने दी थी सूचना। श्रोताओं, रुद्रमुली बाह के शिवदीप सिंह भदौरिया 29 दिसंबर 1995 को भारतीय सेना का हिस्सा बने। नायब सूबेदार शिवदीप की दूसरी तैनाती कारगिल में हुई। उन्होंने बताया कि 13 मई 1999 की सुबह 11 बजे भेड़ बकरी चराने वालों ने कारगिल की चोटी पर असामान्य हरकतों की सूचना दी। पाकिस्तानी सैनिक फायर का पत्थर बरसा रहे थे। मेरी यूनिट में 10 जवानों ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। जबरदस्त फायरिंग से दुश्मन मोर्चा छोड़कर भाग निकले। 27 साल बीतने के बाद भी युद्ध की कहानी सुनाते हुए उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो श्रोताओं, ये थे बलिदान हमारे वीरों के। तो आज कारगिल विजय दिवस पर उन सभी शहीदों को याद करते हुए उनको नमन करते हैं। और श्रोताओं, हम तो यही कहेंगे कि ये जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हैं, जो मिट गए वतन पर, ये वो शहीद हैं। और श्रोताओं, इन्हीं चंद सूचनाओं के साथ दीजिए अनुमति, इस वादे के साथ कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी पूनम को श्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8 बजने को है हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र।

0: से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
7: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए

0: व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के

0: लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार

0: silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता, जबकि खवातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने CJP के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के लिए CJP की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज पर संजीदगी से गौर करेगी और CJP के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। CJP के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नियति के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शराइत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा।
3: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. तो हम immediate effect से protesters से request करते हैं कि आप withdraw करें, peacefully अपने घर वापस जाएं।
1: इस दौरान CJP के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी फिलहाल गजा सारिफिन के उमूर और अवामी निजाम तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के भी वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। ये बिल ऐवान की कल की कार्रवाई के एजेंडे में शामिल है। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024

0: ऑफिस में तरमीम करना है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। मरकजी काबीना ने जुमे को तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसव्वदे को मंजूरी दी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराहे रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शुरका से बातचीत करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 400 से ज्यादा नौजवान शुरका वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 पिछले महीने 4 से 30 तारीख तक दो मरहलों में मुनाकिद किया गया, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 दरख्शा गांवों का इहाता किया गया। इस प्रोग्राम के शुरका का इंतखाब मुल्कगीर ऑनलाइन क्विज मुकाबले के जरिए किया गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मकामी बिरादरियों के साथ रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें सफाई मुहिम, सरकारी स्कीमों से मुतालिक आगाही मुहिम, युवा सम्मेलन, सकाफती तबादले के प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, मिनी मॉडल पंचायत, मकामी दस्तकारों से बातचीत और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के दौरे शामिल थे। इस प्रोग्राम ने शुरका को सरहदी इलाकों के समाजी इकतसादी हालात, सकाफती विरसे और तरक्याती उमंगों का बराह रास्त मुशाहदा करने का मौका फराहम किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसे माई भारत के जरिए नाफिज किया जा रहा है, वजीर आजम के इस नजरिए को हकीकत बनाने के लिए तैयार किया गया है कि भारत के सरहदी गांव को मुल्क के पहले गांव के तौर पर देखा जाए और उन्हें विकसित भारत की जानिब सफर में सरगर्म शराकतदार बनाया जाए। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसअत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हुसूलियाबियां हुई, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और 3 दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहान मुमलकत के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तिजारत, जिद्दत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरकी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। सुभाषरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है, जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के दराज की करगिल जंगी यादगार पर मुनक़िद हो रही है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: द्रास की करगिल जंगी यादगार में 27वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर हुबुल वतनी पर मबनी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं।

0: मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल जंगी यादगार पर ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जाबाजों की यादगारों पर गुलहाय अकीदत नजर करते हुए तकरीबात की क्यादत कर रहे हैं। वजीर दिफा करगिल जंगी यादगार के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह कर रहे हैं, यादगारी कुटिया और वीरभूमि का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत के तई भारत की मुसल्ला अफवाज की शुजात कुर्बानी और गैर मुतजलजल जज्बे की याद दिलाता है। द्रास से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से 2 रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहिरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताजा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत है। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन से नज्म व जब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित रक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फरोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फेहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी

0: साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 हुए हैं और वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, जिसमें आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अपनापन फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीतांजलि में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पहचान फिल्म से ये गीत, मुकेश की आवाज में, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल लिखे थे मजरूह ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, गोपी फिल्म से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में शागिर्द फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे मजरूह ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे हमारी इसी सभा में प्रातः 9:25 पर कार्यक्रम गीत मंजूषा में। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:15 होने को है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: देश भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान को एक बार फिर गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात

0: में वर्षा की हर बूंद को बचाने का आह्वान किया है। 4 जुलाई से 4 अगस्त तक चल रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान में वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया मैम। मैम, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: मैम। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बार इसे किस सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: कैच द रेन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये अभियान चलाया है और 2021 से ये स्टार्ट हुआ है, इसमें मेन ये है वाटर कंजर्वेशन पे है खास तौर से, और उसमें भी वाटर कंजर्वेशन में खास तौर से ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। और इसीलिए क्या कि जब बारिश का पानी गिरता है तो वो धरती में जाता है, अगर हमारे पास बावली नहीं होते हैं, लेक्स नहीं होते हैं या बोरवेल्स हमारे नहीं होते हैं तो वो पानी संचित नहीं होता है और वो बह जाता है और ड्रेनेज के थ्रू ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को इकट्ठा करके उसके थ्रू ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
0: मैम, प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने की अपील की है। इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, साउथर्न एशिया का पार्ट है और इसमें 140 करोड़ लगभग जनता है। और इस बड़े देश में आपने देखा वाटर की क्राइसिस तो है ही। धरती पर 98% वाटर जो है हम लोग नियर अबाउट सब समुद्र में है, मैक्सिमम वाटर कुल 2.6 वाटर पेयजल का है और इसमें कुल 2.6 में भी कुल हमें 0.6% हमको अवेलेबल है, बाकी सब ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो जब हम 0.6% वाटर है तो आपको मालूम है कि वाटर क्राइसिस है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है। भविष्य को देखते हुए हमें ये चाहिए कि जन जन को इस अभियान में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे शहर की बात करिए, चाहे गांव की बात करिए, चाहे सेमी अर्बन के जीने के लिए पानी जरूरी है और साथ में हमारे रिसोर्सेज के लिए भी पानी की जरूरत है। तो हमें जरूरी है कि पानी को हम संरक्षण करें और इसलिए ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक कि हर नागरिक इस देश का आगे नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा।
0: मैम, इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इन प्रयासों का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा?
1: देखिए, आज एक स्थिति हो रही है कि आपने देखा है कि कई जगह आप बुंदेलखंड में जाइए पानी की कमी है, महोबा और ऐसे एरिया में, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है कि जब जून की गर्मी आती है तो वहाँ पे जो बेतवा है, केन है, बिल्कुल नदियाँ एक धारा सी बन के रह जाती हैं, पानी कम हो जाता है। छतरपुर ऐसा एरिया है जहाँ पानी नहीं है और बात की जा रही है कि केन बेतवा को जोड़ा जाए तो हम छतरपुर में पानी ला पाएंगे, पन्ना से होता हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक एक बावली, लेक, वेटलैंड्स, पॉन्स, बोरवेल्स जो सूख चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, और स्टेपवेल्स जो सीढ़ियों वाली हमारी पूरी या हेरिटेज वेल्स है हमारे दुनिया में कई जगह ऐसे जो बावली बनी है पुराने जमाने की, उसको हम पढ़ें, उसको स्टडी करें कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाता था और आज हम उसी ट्रेडिशनल नॉलेज पे जा करके उनका संरक्षण करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकें रेन वाटर और उस माध्यम से उसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते। तो इसलिए हर बावली, हर पुराने जो बोरवेल्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ में बख्शी का तालाब है, आपने स्टेपवेल देखा है, ऐसे ही हमारे गुजरात में, बेंगलोर में कई जगह पुरानी पुरानी बावलियां हैं, तो उनको हम संरक्षित करें और उनको जब हम रिवाइव करेंगे तब उनमें पानी भरेगा। तो वही ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही वैसे ढंग से बनाई गई हैं जिसकी हमें स्टडी करनी चाहिए, जब पानी उसमें इकट्ठा होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा।
0: मैम, केंद्र सरकार ने घरों, सोसाइटियों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, रिचार्ज पिट बनाने और अनुपयोगी बोरवेल को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर जोर दिया है, इनको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है?
1: देखिए, काम तो किया जा सकता है लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है 2021 में, मतलब उसके पहले हम लोग ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो आज बहुत सी चीजें हमारी शैटर्ड हैं। तो हमें जब उनको रिवाइव करेंगे, तो जब आप किसी भी एक वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? एक गंदा नाले जैसा पॉन्ड या खराब पानी, उसका पोल्यूटेड होगा, बहुत गंदा होगा, पीने लायक नहीं होगा, इवन पीने के किसी भी प्रयोग के लायक नहीं होगा, कृषि के लिए भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों

0: के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, दिशा निर्देश की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत। तो ये डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर हम फेजेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्लानिंग बनाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे, तो हम इन सारी जो रोड़े हैं इन सबको हटा लेंगे और हम उनका संरक्षण कर सकते हैं।
1: जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण में 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनी और दूसरे चरण में 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की सूचना मिली है। इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते
0: हैं? हम इन उपलब्धियों को ये देखते हैं कि हमारा समाज इसका मतलब जागरूक हो रहा है। लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए, लोग आगे आना चाहते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो सहयोग करना चाहते हैं। एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में जो कहीं छिपी हुई है, तो अगर हम उतने ही एफिशिएंट हो जाएं और ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाकर सपोर्ट करें और पब्लिक को जोड़ें, तो हमें लगता है कि देर नहीं है कि चीज़ों को हम सॉल्व कर सकेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे।
1: मैम, इस अभियान में पंचायतों, शहरी निकायों, महिला समूहों, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है उसके बारे में प्रकाश डालिए।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए अभियान चलाते हैं तो हमारे जो समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जो पानी पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई वाटर टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वाटर की हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वेटलैंड कंजर्वेशन पे काम कर रहा है कई सालों से, तो जो उनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे अभियान में बहुत काम आई। महिला को क्यों जोड़ा? आपको मालूम है महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में फेस करती है पानी की क्राइसिस को। हमारे समाज की यूनिट क्या है? फैमिली। और फैमिली की कर्ता धर्ता कौन है? महिला। वो ये महसूस करती है कि अगर एक दिन पानी ना आए तो घर में खाना कैसे बनेगा, स्नान गृह में भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, कपड़ा धोने का पानी भी नहीं है, बर्तन धोने का भी पानी नहीं है। तो महिला को जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, तो वो जानती है कि इसके लिए हमें काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो इंथुसियास्टिक होके पूरा अपना 100% योगदान देगी और वो हो भी रहा है। साथ में पंचायत, देखिए पंचायत एक ऐसी बॉडी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी गांव में जितनी भी बावलियां हैं, लेक्स हैं, वो सब ग्राम पंचायत की जमीन है, वो प्राइवेट जमीन नहीं है। तो उसमें काम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है।
1: मैम, आकाशवाणी के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस अभियान से जुड़ करके जल संरक्षण को अपना जन आंदोलन बना सके, उनकी क्या भूमिका है?
0: हमारे जो श्रोता हैं, कहीं ना कहीं जो शहर में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, हमारा ये जन से आह्वान है कि आप किसी भी गांव के हैं, किसी भी एरिया के हैं, आपके आसपास कोई भी जल स्रोत है उस पे ध्यान दें, उसको मेंटेन करें। हमारी क्या आदत है कि हमारा घर साफ हो जाए बाकी कूड़ा तालाब में, सीवेज उधर ही हमारा जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर लोग अपना एक समूह और सोसाइटी बना करके अपने अपने एरिया की चीजों को अगर संरक्षित करें, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की गई है सब जगह कि हम घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिससे कि उस पानी को हम इकट्ठा करके और उसको हम अपने घर के प्रयोग में ले आए, टैंक बनाए और उसके गार्डनिंग में, और ये तो बूंद बूंद करके जैसे गागर भरती है, तो हर जन जब थोड़ा थोड़ा करेगा तो वो मिलके बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक अभियान में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा ये होगा और हमारी फिर समस्या खत्म हो जाएगी। आगे हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकेंगे, तो हम सभी लोग को इसमें भाग लेना चाहिए।
1: मैम, आपने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:25 हुए हैं और श्रोताओं वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं।

लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा, जिसमें आपको सुनवाएंगे फिल्मों से पुराने गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, तीन देवियां फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। शब्द रचना मजरूह की है, संगीत SD बर्मन का।

श्रोताओं, तीन देवियां फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में नीरज का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गैम्बलर फिल्म से।

श्रोताओं, जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे नेवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदीवर का गीत किशोर कुमार की आवाज में, धर्मात्मा फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में धर्मात्मा फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ

पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे हमारी इसी सभा में प्रातः 10 बजे कार्यक्रम सुर सरिता। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:45 हुए हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम लोक संगीत का, तो आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं युगल लोकगीत। तो आइए पहला युगल लोकगीत सुनते हैं अनुपमा सक्सेना और संजय उपाध्याय के स्वर में, छोड़ू मटुकिया हमारी।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं युगल लोक गीत। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं आशा कटारा और संजय उपाध्याय की युगल आवाजों में ये लोकगीत, मोपे बोल सुने ना जाएं।

श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे युगल लोक गीत। युगल आवाजें थी आशा कटारा और संजय उपाध्याय की। श्रोताओं, इन लोकगीतों के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है सदाबहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का, तो हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सुर सरिता। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अनोखी अदा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे हैं मजरूह ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुर सरिता में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाज में। कैफी आजमी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अभिनेत्री फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल लिखे थे मजरूर ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं खयाम के संगीत निर्देशन में साहिर का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, कभी कभी फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नीरज की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही सदाबहार फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत सुनने से पहले आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में, तो सुनना मत भूलिएगा। दिन में

11 बजे कार्यक्रम मन की बात मीडियम वी पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एन वी पटवर्धन से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग जोग। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल है हुलसायो मेरा जिया। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल है सजन मोरे घर आए। तबले पर आपके साथ हैं मसीद खान अगाए और हारमोनियम पर आपकी संगति कर रहे हैं मुश्ताक हुसैन खान। तो आइए सुनते हैं एन वी पटवर्धन से राग जोग में ख्याल गायन।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एनवी पटवर्धन से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग जोग। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, 11 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मन की बात, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी।

बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा

द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था।
1983

1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प

अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को
प्रकृति से जरूर जोड़े।

एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती।

मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में

0: कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनांजलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रीय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान

श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश अमर की आवाज में लावनी, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश अमर की आवाज में ये लावनी, और इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं फिल्म एनिमल का ये गीत सोनू निगम की आवाज में। धुन बनाई है हर्ष वर्धन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में फिल्म एनिमल का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं बी प्राक की आवाज में फिल्म केसरी से।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे बी प्राक की आवाज में फिल्म केसरी का ये गीत। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम की मधुर आवाज में फिल्म मिशन मजनू का ये गीत। शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की, संगीत रचना है रोचक कोहली की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिशन मजनू फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर की आवाजों में फिल्म मिशन मुंबई का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं जफर सागर ने, धुन बनाई है दिलीप सेन ने।

साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर की आवाजों में फिल्म मिशन मुंबई का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में, भारतीय सेना फिल्म से।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में भारतीय सेना फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में मणिकर्णिका फिल्म का ये गीत। संगीत रचना है शंकर एहसान लॉय की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज़ में फिल्म मणिकर्णिका का ये गीत। संगीत रचना थी शंकर एहसान लॉय की। इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July. In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, every Indian is cheering for the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports events recently. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Kargil Vijay Divas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, the President, the Vice President and the Prime Minister paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today paid homage to the brave hearts of the Kargil War at the Kargil War Memorial in Dras. Addressing the gathering, Rajnath Singh said the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. The Indian Embassy in Ukraine has said that it is closely monitoring the situation

0: following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odessa yesterday. In a social media post, the embassy said 2 out of 4 Indian nationals on board have been confirmed safe, while information about the other 2 is still awaited. External Affairs Ministry today issued an advisory urging Indian nationals intending to undertake employment on commercial vessels operating in or transiting Black Sea region to carefully assess the prevailing security risks before accepting such assignments. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. And that is the end of this news bulletin.
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान दिफा बरामदात सियासी तआवुन और दोस्त ममालिक के साथ दोस्ती में मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कारगिल विजय दिवस के बहादुर सिपाहियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन हम वतनों को हमारे बहादुर फौजियों की गैरमामूली बहादुरी की याद दिलाता है और हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर देता है। मादरे वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने हम वतनों से अपील की कि वो एक महफूज काबिल और खुद निसार हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। मन की बात में कैच द रेन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि यह खसूसी मुल्कगीर मुहिम 4 जुलाई से चलाई जा रही है। इस इकदाम के तहत बारिश के पानी की जखीरांदोजी, जमीनी पानी को रिचार्ज करने और आबी जखायर और बागात की बहाली को नई रफ्तार मिल रही है। जनाब मोदी ने गांवों और शहरों से लेकर पंचायतों और समाजी तंजीमों तक इस मुहिम में भरपूर शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों को साफ किया जा रहा है और कुओं की तजीन और आराइश की जा रही है। जेर जमीन पानी के रिचार्ज के लिए बोरवेल अब इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अहले वतन से अपील की कि वो करीबी तालाबों कुओं की जिम्मेदारी लें ताकि पानी की एक एक बूंद को बचाया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात के 136वें एपिसोड में मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को मुल्क भर में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि यह दिन मुल्क के बुनकरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतों के एहतराम की अलामत है। उन्होंने लोगों से जोर दिया कि वो हैंडलूम दस्तकारी की हौसला अफजाई करके और लोकल फॉर वोकल के जज्बे को मजीद तकवीत देकर बुनकरों की इज्जत करें। वजीर आजम ने खादी का भी जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को यह बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि खादी हालिया बरसों में बहुत मकबूल हुई है। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा त्यौहार के मौसम में खादी, हैंडलूम या दस्तकारी से बनी कम अज कम एक प्रोडक्ट जरूर खरीदें। आज अपने मन की बात खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को मुनक़िद एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का जिक्र भी किया।
2: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
1: प्रोग्राम में उन्होंने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन का जिक्र करते हुए कहा,
2: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
1: वजीर आजम ने नौजवानों के जरिए हाल ही में स्पोर्ट्स में हासिल की गई कामयाबियों का भी जिक्र किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोजा दौरे पर कल आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के शिवाजी मंडप ऑडिटोरियम में आला तालीम के महकमे के 7,50,000 से ज्यादा असातजा और उनके जेरे किफालत इफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करने वाली वजीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम के आगाज के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा,
3: कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है, जिसमें

0: दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा।
1: ये इसकी महात्माएं हायर एजुकेशन के 1,28,000 से ज्यादा असतजा और उनके जेरे किफालत खानदानों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त मियारी और कैशलेस तिब्बी सहूलियात फराहम करने की तरफ एक तारीखी कदम है। वजीर आला आज आगरा के साथ मैनपुरी और इटावा में भी मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों में शामिल होंगे। दरियस्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाके नेशनल पीजी कॉलेज में वजीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम की इफ्तिताही प्रोग्राम में नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कयादत में उत्तर प्रदेश हुकूमत तालीम और सेहत दोनों शोबों में अवामी मफादी फैसलों के जरिए रियासत को नई बुलंदियों की जानिब गामजन कर रही है। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1999 में कारगिल जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अजीम कुर्बानियां दी। कारगिल विजय दिवस पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश किया है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में तश्कील दी गई नई एसआईटी टीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इसमें आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर शामिल हैं। इससे पहले नई एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और खसूसी सेक्रेटरी खजाना नील रतन कुमार शामिल थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नष्ट किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्नू का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल।

जय हिंद प्यारे बच्चों, दिन है आज रविवार। तो आज हमारे बच्चे इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल का, और बाल मंडल में आज आपके साथ है आपकी ललित दीदी। बच्चों, आज हम उन अमर वीरों को नमन करते हैं जिनके अदम्य साहस, अटूट विश्वास और सर्वोच्च बलिदान ने भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। बच्चों, आज कारगिल विजय दिवस है। हर साल 26 जुलाई को पूरा देश उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता है जिन्होंने वर्ष 1999 में कारगिल की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर अद्भुत साहस, धैर्य और देशभक्ति का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। कठिन मौसम, ऊंचे पहाड़ और दुश्मनों की चुनौती के बावजूद हमारे जवानों ने तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं दिया। बच्चों, मई 1999 में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने भारतीय सीमा को पार करके कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये घुसपैठ जम्मू कश्मीर के द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में हुई थी। बच्चों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। सैनिकों ने 16,000 से 18,000 की ऊंचाई पर कठिन मौसम, ऊपर से गोलाबारी झेलते हुए चोटियों पर चढ़ाई की। टाइगर हिल्स और तोलोलिंग जैसी

चोटियों पर कब्जा फिर से पाना सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनेक वीरों ने अपने अद्भुत पराक्रम से इतिहास रच दिया। बच्चों, कारगिल युद्ध में बलिदान होने के 10 दिन पहले एक सैनिक योगेंद्र पाल सिंह का अपनी माँ के नाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, माँ चिंता मत करना, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, दुश्मनों की ओर से गोलियों की बारिश हो रही है लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, एक एक गोली का हिसाब ले रहे हैं, जीवित घर लौटे तो दिवाली में साथ होंगे और बलिदान हुए तो जय हिंद जय भारत। जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं तब हमारे सैनिक सीमा पर हर मौसम, हर कठिनाई और हर खतरे का सामना करते हैं और बस यही कहते हैं,

0: बच्चों, मम्मी पापा आपको हमेशा यही सीख देते होंगे कि सच बोलिए, कभी झूठ मत बोलिए, कभी झूठ का साथ मत दीजिए। सच में सच का बहुत बड़ा मोल होता है। तो बच्चों, आज भी हम आपको सुनवाते हैं आपकी रमा दीदी से कहानी सच का मोल।
1: बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है सच का मोल। ऐसे तो मंगल पढ़ाई में बहुत होशियार था, घर में सभी उसे बहुत प्यार करते, दोस्तों की तो जैसे जान था। पर पिछले कुछ दिनों से मंगल को एक बुरी लत लग गई थी। वो बात बात पर झूठ बोलने लगा था। पहले तो सबने ये उसका मजाक समझा, लेकिन अब कई बार उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। उसके दोस्त भी परेशान थे और उसके स्कूल से भी शिकायत आने लगी थी। कल की ही तो बात थी, दादाजी ने उसे कहा कि मंगल, जाओ जरा दुकान से एक साबुन की टिकिया तो ला दो। मंगल ने लाकर दे दी और बोला, दादाजी 5 रुपए का साबुन अब 6 रुपए का हो गया है। दादाजी का माथा ठनक गया, इतनी जल्दी मूल्य कैसे बदल गया? पिछले हफ्ते तो इतना ही था। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मंगल की माँ से बात की तो पता लगा कि वो उनसे भी झूठ बोलता है। फिर दादाजी ने मंगल के दोस्तों को एक दिन घर बुलाया तो बातों बातों में उनसे भी यही बात पता लगी। अब तो दादाजी चिंता में पड़ गए कि इतना होशियार बच्चा अगर ऐसे बिगड़ गया तो इसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। फिर क्या था, दादाजी ने एक योजना बना ली और उसके सभी दोस्तों और घर के लोगों को उसमें शामिल कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब मंगल स्कूल जाने लगा तो देखा दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए खांस रहे थे। उसने दादाजी से पूछा, क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, वैसे तो ठीक हूँ, पर कल रात से बुखार आ गया है, ठीक हो जाऊंगा, दवाई ले ली है। तो दादाजी, मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। अरे नहीं बेटा, मैं इतना बीमार नहीं हूँ, तुम स्कूल जाओ, मैं ठीक हूँ। दादाजी के जिद करने पर वो स्कूल चला गया। लंच में उसके दोस्त और उसका सबसे प्यारा दोस्त अनुज दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, अरे मंगल जल्दी घर जा, तेरे दादाजी मर गए। मंगल को काटो तो खून नहीं, वो चिल्लाया, पागल हो गया है क्या अनुज, मैं सुबह उनसे मिलकर आया हूँ, वो ठीक थे, हाँ उनको बुखार था बस। तभी दूसरे दोस्त भी उसके पास आ गए, वो सभी उदास थे और दुखी भी लग रहे थे। अब मंगल को लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं, तो वो चीख मार कर रोने लगा। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके दादाजी उसे छोड़कर चले जाएंगे। वो रोता हुआ घर आया, पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ गए थे। घर में देखा दादाजी एक चारपाई पर मुंह ढक कर लेटे हैं और घर के सभी लोग उदास बैठे हैं, कुछ लोग सुबक भी रहे हैं। अब तो उसे यकीन हो गया कि यही सच है। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, अरे मंगल इतना चिल्लाकर क्यों रो रहा है?

0: क्या हो गया है? मेरे दादाजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब तो मंगल और भी तेज रोने लगा। तभी अचानक सब लोग हंसने लगे और दादाजी भी उठकर बैठ गए। वो भी जोर जोर से हंस रहे थे। अब गुस्सा होने की बारी मंगल की थी। आप सब मुझसे झूठ बोल रहे थे? कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपको पता भी है दादाजी, मेरा क्या हाल हो गया था? आप सब इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो दादाजी ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया और प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, झूठ क्या केवल तू ही बोल सकता है? अब पता लगा कि झूठ बोलकर किया गया धोखा कितना गलत होता है। बेटा, सच का कोई मोल नहीं होता, लेकिन सच से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। अब मंगल को सब समझ में आ गया। अब तक मंगल का गुस्सा भी शांत हो गया था। वो आंसू पोंछते हुए बोला, दादाजी, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आप देखना, हमेशा सच बोलूंगा और बहुत अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। दादाजी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने मंगल को उठाकर उसका माथा चूमा और गले से लगा लिया था। आज मंगल भी बहुत खुश था। उसे सच का मोल जो पता लग गया था।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी कहानी सच का मोल। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि कहानी सुनकर आप भी जरूर प्रेरित हुए होंगे और कभी भी झूठ का साथ नहीं देंगे, हमेशा सच बोलेंगे। बच्चों, आजकल मौसम जो है वो थोड़ा सा बदल सा रहा है। बरसात का मौसम है, कभी हल्की सी मौसम में ठंडक हो जाती है, कभी बहुत तेज गर्मी लगने लगती है, उमस है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाई, आप यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और खुश कैसे रहेंगे, है ना? तो कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं और कई बार क्या होता है, आपकी जो प्यारी सी गुड़िया होती है ना, वो भी बीमार हो जाती है। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

बच्चों, हम आपसे बात कर रहे थे कारगिल युद्ध की। जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम

बत्रा ने 0.5140 पर विजय प्राप्त की। सफलता का संदेश मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। उनका कहने का मतलब था कि ये यही नहीं रुकेंगे, बल्कि देश के लिए और भी कठिन मिशन पूरा करने को तैयार हैं। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार से कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। आज ये दिल मांगे मोर केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए साहस, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा बन चुका है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त कठिनाइयों से नहीं घबराता, बल्कि हर चुनौती का सामना पूरे साहस और समर्पण के साथ करता है। कारगिल युद्ध के दौरान उनका कोड नेम शेरशाह था। उनकी बहादुरी से दुश्मन सैनिक भी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। विक्रम बत्रा अपने सैनिकों से कहते थे, अफसर का काम पीछे से आदेश देना नहीं, बल्कि सबसे आगे चलकर नेतृत्व करना है। कारगिल युद्ध के दौरान उनके अद्भुत साहस और नेतृत्व की चर्चा दुश्मन पक्ष तक में होती थी। उनकी वीरता ने उन्हें भारतीय सेना के सबसे प्रेरणादायक वीरों में शामिल कर दिया। बार बार नमन है हमारा ऐसे वीरों को।

बच्चों, एक ऐसी दवा जिसे खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते, जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जितनी ज्यादा बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। अब बच्चे हमारे सोच में पड़ गए होंगे कि ललित दीदी ऐसी कौन सी दवा बता रही हैं। वे दवा है मुस्कुराहट की, प्यारी सी मुस्कुराहट, आपकी हंसी। जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, ये तनाव कम करते हैं, मन को प्रसन्न बनाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में लाफ्टर थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों, एक प्यारी सी मुस्कान किसी उदास चेहरे पर खुशी ला सकती है। आपकी हंसी किसी का दिन बेहतर बना सकती है। इसलिए हंसना केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत उपहार होता है। मुस्कान कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान बना देती है और सच्ची हंसी वही है जो किसी का दिल ना दुखाए। हंसी से रिश्तों में मिठास खोलें, इसलिए खुलकर मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है। लाइफ फास्ट मोड पे चल।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गीत व भजन। तो आइए सुनते हैं उनका ये भजन,

श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गीत व भजन। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में गीत व भजन, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओ, दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to countries scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुई

0: NIMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
2: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
2: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।

0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन

0: करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर

0: क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के अतिथि। तो आइए सुनते हैं आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर वर्षा रानी से अनिंद्र सिंह की ये बातचीत। विषय है संस्कृत संरक्षण और संवर्धन, क्यों और कैसे। तो साथियों, आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर भाषाओं को भी माता का दर्जा दिया जाता है, संस्कृत माता। श्रोताओं, संस्कृत भाषा यानी देववाणी, प्राचीन भारत की संस्कृति जो रही उसमें संस्कृत का जो स्थान रहा, जो महत्व रहा, वो शायद धीरे धीरे उसमें ह्रास आया। वर्तमान स्थितियों में संस्कृत का क्या स्वरूप है और कैसे संस्कृत की इस स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, उसको संरक्षित किया जा सकता है, उसको संरक्षण दिया जा सकता है, उसका संवर्धन किया जा सकता है, इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ KMI आगरा से जुड़ी हैं डॉक्टर वर्षा रानी जी। डॉक्टर वर्षा रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
3: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया।
2: मैडम, प्राचीन भारत की जो स्थिति थी उसमें संस्कृत भाषा का महत्व बहुत हद तक अग्रणी स्थान रखता था। वर्तमान परिस्थितियों में संस्कृत की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये केवल एक शास्त्रीय भाषा बन के रह गई है या इसका कोई व्यवहारिक उपयोग भी हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है?
3: देखिए, संस्कृत सदैव पूजनीय रही है, वंदनीय रही है। आपने आरंभ में ही कहा देववाणी रही है। देववाणी क्यों रही है? क्योंकि यह देवताओं की भाषा रही है। आज भी हम जब कोई हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो उसका आरंभ क्या कहते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण के साथ में हमारी बात जो है देवताओं के कान में पहुंचा सकते हैं,
2: क्योंकि हमसे देवताओं की भाषा है।
3: देवताओं की भाषा है, हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन पंडित जी जो है वो जरूर जानते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि संस्कृत जो है वो पंडितों की भी भाषा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज क्या है, आज का जो युग है ना वो डिजिटल का युग है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप घर बैठ के स्वयं संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत स्वयं शिक्षक है, संस्कृत जो है ऑनलाइन ट्रांसलेशन का भी बहुत सारी ऐप आ गई हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि जैसे आपने वेदों की बात की है तो वेदों में आप ये देखिए जो अग्निदेव है, अग्निदेव जो है वह देवताओं के बीच में और मानव के बीच में एक संदेश वाहक का काम करते हैं।
2: अग्नि,
3: अग्निदेव
2: जी।
3: क्यों? क्योंकि जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं ना, तो उन आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य जो करता है धुएं के माध्यम से,
2: संवाहक है
3: वो उसका संवाहक है, वो उसका दूत है हमारे संदेशों को वहां तक पहुंचाने का। अब मैंने यहाँ पे आपको दो दूत बता दिए, एक पंडित जी को बताया जो मौखिक वार्ता हमारी जो है कान में जाके बताते हैं मंत्रों के माध्यम से, दूसरे देवता हमने हवन यज्ञ इत्यादि की जो सामग्री है उसके द्वारा। साइंटिफिक रीजन पे भी मैं आऊंगी कि जो हमारा वायु प्रदूषण जो होता है, हवन की जो संविधा होती है उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे आसपास के कीटाणुओं को जो है नष्ट करते हैं, उससे हमारा वातावरण, हमारा माहौल जो है वो शुद्ध होता है। इसको हम प्रयोग में भी कर सकते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, इससे यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसके कानों में प्रतिदिन यदि हम बैठकर नहीं बोल पा रहे हैं तो आजकल वो माइक्रो मशीन सी आती है जो 108 बार बोलेगा और वो उसके पास में हम लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके ध्यान जो है वो अंतिम समय में परमात्मा के साथ में जुड़ता है। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और भी दुर्गा सतपति है, बहुत सारे पाठ होते हैं जिनको हम आज ऑनलाइन जो है डिजिटल रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो संस्कृत जो है वो जीवंत भाषा है, इसके साथ साथ में संस्कृत जो है बहुत ही हास्यप्रद भाषा भी है। हास्य गणिकाएं इसमें आती है, हास्य गणिका मतलब जोक, चुटकले
2: जी जी,
3: लेकिन उनका महत्व जो है उन्हीं के मध्य है जो संस्कृत को जानते हैं, समझते हैं। जो आम व्यवहार में उसको लाते हैं।
2: तो कहने का मतलब है कि

0: जो हम कह रहे हैं कि प्राचीन भाषा थी उसको आज भी रिवाइव किया जा सकता है, भले ही
1: जी
0: हम आधुनिकता की तरफ आकर्षित हो के या
1: जी
0: मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाके संस्कृत से विलग हो गए हों, लेकिन आज भी हमारे पास वो संसाधन मौजूद हैं जिनका उपयोग करके हम इसको व्यवहारिक रूप दे सकते हैं।
1: जी हम इसको व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। एक और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं अभी अपनी बेटी के साथ में हम कहीं गए थे, आश्रम में ही गए थे, लेकिन हमने वहां पे हमारे परिचित को 2-3 बार आवाज दी, भ्राता भ्राता, उन्होंने नहीं सुना।
0: जी
1: पुत्री ने भी उनको बुलाया 2-3 बार, उन्होंने नहीं सुना। जैसे ही संस्कृत में बोला आई भो कथम अस्ति, वो एकदम से चकित रह गए कि संस्कृत को बोलने वाला यहाँ पे कैसे एकदम से आ सकता है। तो संस्कृत को जब हम लेंगे ना, आप 2 शब्द 2 श्लोक संस्कृत में बोल दीजिएगा, सभी का ध्यान आपकी ओर आएगा कि अरे ये संस्कृत जानता है, ये संस्कृत में बोल सकता है। तो भाषा विशेष है, उसको विशेष बनाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि जहां जिस परिवेश में हम जा रहे हैं उसके साथ में हमें हिंदी भी आना चाहिए, हमें अंग्रेजी भी आना चाहिए, हमें संस्कृत भी आना चाहिए, और कहीं कहीं तो हमें उर्दू के जो अल्फाज होते हैं ना वो भी समझ में नहीं आते हैं। तो हमें क्या, ऐसी जगह पर हमें क्या करना है, अपनी विशेषताएं जो है उनको जागृत करना चाहिए। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है प्रतिभा खोज कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित करता है, संस्कृत भारती जो है वो संस्कृत संभाषण शिविरों के आयोजन के द्वारा करता है, और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है जिसके अंतर्गत मेजर और माइनर का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी विषय का विद्यार्थी जो है संस्कृत भाषा को, जिसने बीए में जिसके पास संस्कृत नहीं है वह विद्यार्थी भी संस्कृत भाषा में एमए कर सकता है, उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। तो संस्कृत ऐसा नहीं है कि केवल वेदों की भाषा है, पुराणों की भाषा है, केवल पंडितों की भाषा है, देवों की भाषा है, संस्कृत सबकी भाषा है।
0: आपने बताया कि संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है वो भी बहुत हद तक प्रामाणिक है,
1: जी
0: सब लोग उसको मानते हैं जानते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में अगर बात करें तो युवाओं में क्या, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, संस्कृत भारती
1: जी
0: करती है, संस्कृत संस्थानम कर रहा है, तो आज के युवा में क्या इस संस्कृत भाषा को लेकर कहीं एक उत्सुकता नजर आती है आपको?
1: जी आज के संदर्भ में यदि मैं लूं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब हमने यहाँ पे अपना कार्यक्रम आरंभ किया था तो 0 से आरंभ किया था।
0: जी
1: आज हमारे पास में 50 तो विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, और संस्कृत प्रतिभा खोज की जब मैं आवेदन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 150 आवेदन आते हैं। जब मैं अपने संस्थान में संस्कृत संभाषण शिविर का कार्यक्रम करना चाहती हूं तो मेरे पास में 250 आवेदन आते हैं, और जून के महीने में मैं संस्कृत संभाषण शिविर चलाती हूँ KMI में ही, उस दौरान तपती धूप में संस्कृत सीखने के लिए 250 में से 180-150 लोग मेरे साथ में हॉल में बैठकर संस्कृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं।
0: जी
1: तो ये संस्कृत के प्रति अनुराग है, लोगों में जागृति आई है, संस्कृत आज भी जीवंत है, और संस्कृत पहले भी जीवंत थी और सदैव जीवंत रहेगी।
0: सरकार ने भी जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें भी संस्कृत को प्रमोशन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें ऐड की हैं जिनके बारे में शायद आप और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि किस तरह से संस्कृत भाषा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिक प्रासंगिक बनाए जाने की कोशिश की गई है।
1: देखिए नई शिक्षा नीति का जब हम बीए का पाठ्यक्रम देखते हैं,
0: जी
1: बीए फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर जो आता है ना पूरा संस्कृत और आधुनिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपकी शोध गंगा, डिजिटल बोर्ड, आपका कंप्यूटर इनपुट, वॉइस टाइपिंग इत्यादि, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें संस्कृत की संगणकीय उपयोगिता,
0: जी
1: संस्कृत का कंप्यूटर में क्या उपयोगिता है, ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में है सर। तो ये नई शिक्षा नीति है जिसने, बच्चा यदि माइनर सब्जेक्ट भी लेता है संस्कृत का तो इतना तो वो जान ही जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जब हम वहां से स्पेस से जब कोई मैसेज किसी अन्य भाषा में देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन यदि संस्कृत भाषा में हम वही मैसेज टाइप करते हैं तो उसकी सेंस वही वही रहती है। तो ये संस्कृत की वैज्ञानिकता है।
0: वो
1: पढ़ते हैं
0: मशक्कत और भाषाओं में आपको डिकोडिंग करने के लिए करनी पड़ सकती है,
1: जी
0: लेकिन संस्कृत भाषा में शायद वो जो डिकोडिंग करने भी इतना मुश्किल नहीं
1: नहीं है।
0: होता। जी
1: इसी के साथ में नई शिक्षा नीति के साथ साथ में हमारा जो UGC के द्वारा कार्यक्रम भी चलता है, अभी आगे भी हमारी एक कार्यक्रम हो रहा है, 15 दिन का एक वर्कशॉप हो रहा है सर KMI में,
0: जी
1: भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, जिसमें वेदों पुराणों से लेकर हर आधुनिक विषय, चिकित्सा पद्धति, हर विषय के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर एक 15 दिन का वर्कशॉप भी आयोजित हो रहा है। इसके साथ सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम एक अलग से विभाग

0: भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संचालित कर दिया है। वहां से हमें क्या मिलेगा? भारतीय ज्ञान परंपरा की यदि आप बात करो और संस्कृत वहां पे ना हो तो यह तो फिर कैसी ज्ञान परंपरा?
1: जी
0: तो सब कुछ संस्कृत भाषा में निहित है। गणितीय लीजिए, गणित का एक मैं छोटा सा यहाँ पे एक उदाहरण देना
1: जी
0: चाहूंगी
1: जी
0: आपको। संस्कृत में एक भूगर्भ गृह करके एक ग्रंथ आता है, जैसे हमें घर पढ़ना है, वहां गणित में देखिए घर को कैसे पढ़ेंगे। क ख ग घ, घ कितने नंबर पे आया? चार
1: चार पे
0: नंबर पे। इसी प्रकार से र जब गिनते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 42 42 नंबर पे र वर्ण आता है, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा 442। तो 442 का मतलब क्या हुआ? घर।
1: जी
0: ये गणित में पूरा लिखा हुआ ग्रंथ है, एक एक चीज को वहां पे वर्णों को गणित के माध्यम से बताया गया है। ये भी संस्कृत का ही पार्ट है,
1: वो आपको वैज्ञानिकता उसकी समझ में आती
0: समझ
1: है।
0: में आती
1: तो
0: है।
1: आज का जो डिजिटल युग है उसमें आपने बात की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी संस्कृत का उपयोग बढ़ रहा है, उसकी लोग उसको लोग अब समझ रहे हैं। आजकल जमाना जो है वो एआई का आ गया है, तो एआई जैसे टूल्स जब मौजूद हैं जाहिर सी बात है कि इनका उपयोग भी बढ़ेगा, संस्कृत में भी इनके उपयोग आएंगे, और जो अनुवाद है और या उसको उसके प्रति जो समझ है वो नए नए ऐप्स नए नए टूल्स के जरिए शायद युवाओं में और बढ़ेगी।
0: देखिए एआई आया है बहुत ज्यादा, आज के युवा में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जा रहा है वो चैट जीपीटी किया जा रहा
1: चैट
0: है,
1: जीपीटी
0: मेटा एआई किया जा रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। व्हाट्सएप जैसे ही करते हैं तो सीधा उसी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। उसको हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग किए बिना हम उसको उपयोग नहीं कर सकते,
1: आपको
0: क्योंकि वो
1: पहले
0: प्लेगरिज्म
1: जी
0: कॉपीराइट का इशू आता है। हमें पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे वो कितना ही आज का जो दौर है वो कितना ही डिजिटल क्यों ना हो जाए, कितना ही कंप्यूटर क्यों ना लग जाए, कितने ही रोबोट क्यों ना आ जाए, लेकिन एक शिक्षक की आवश्यकता सदैव रहेगी। हमें मानव बुद्धि का प्रयोग जो है वो सदैव उसमें करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें लिखना है अल्पसंख्यक कहीं या बहुसंख्यक हमें कहीं लिखना है, तो बहु से वो बहुजन भी कर सकता है ना। अब उसमें तो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो चीज फीड हो गई है। ऐसे ही संस्कृत में मान लो हमें लिखना है पठंती, वो उसको लिख दे पतंती। हमें तो लिखना है ना कि छात्राः पठंती, और
1: जी
0: वो लिख दे उसको छात्राः पतंती, तो
1: भाव
0: छात्राः
1: बदल जाता है,
0: पठंती तो हो गया कि छात्र पढ़ रहे
1: पढ़ते हैं पढ़
0: हैं,
1: रहे हैं
0: लेकिन उसने बता दिया क्या छात्राः पतंती, तो छात्र तो गिर गए
1: गिर
0: ना,
1: गए
0: तो वो
1: बिल्कुल
0: उत्थान कैसा हुआ? वो पतन हो गया। तो वहां पे हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ में अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग वहां पे करना पड़ेगा।
1: जी। एक सवाल जो आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि आपका संस्कृत भाषा के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे कहाँ से शुरू हुआ, वो थोड़ा और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: बहुत छोटी सी थी जब पहली बार संस्कृत पढ़ना शुरू किया, सभी विषयों से डर लगता था। हमारे टाइम में इंग्लिश भी 6th क्लास से शुरू होता था और संस्कृत भी 6th स्टैंडर्ड से शुरू
1: जी
0: होता
1: जी
0: था, तो इंग्लिश से लगता था डर। और संस्कृत की जो टीचर आती थी वो हमें गा गा के, काक कृष्ण पिकर कृष्ण कोई भी श्लोक होता था सब गा गा के मैम हमें सुनाती थी। त्वमेव माता च पिता
1: पहले तो स्कूल्स
0: त्वमेव,
1: में जो है असेंबली में
0: नहीं
1: श्लोक से शुरू होती थी।
0: असेंबली में नहीं था, लेकिन ये जब पाठ में आया तब
1: हाँ
0: हमने सीखा। तो संस्कृत के प्रति अनुराग जो है उसका श्रेय मैं दूंगी अपने गुरुजनों को, कि मेरे गुरुजनों ने मुझे शुरू से संस्कृत के प्रति मेरा जो लगाव रहा, मेरे सबसे अच्छे नंबर संस्कृत में रहे। तो घर वालों ने भी कहा कि भाई इसे संस्कृत पढ़ा देते हैं, तो इसलिए संस्कृत के प्रति रुचि जो रही वो कहते ना पहला गुरु, तो वो हमारी जो 6th क्लास की जो टीचर थी उन्होंने इतने अच्छे से संस्कृत का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अब संस्कृत से डर नहीं लगता है।
1: जी
0: संस्कृत को तो अब जैसे अनुदित गीत आते हैं संस्कृत में, अब तो अनुदित गीत भी आते हैं, फिल्मी गीतों का अनुवाद भी होता है, वैसे संस्कृत गीत भी आते हैं। तो बहुत ज्यादा जब भी कभी मन उदास होता है या कभी मन करता है तो बहुत सारे लोग फिल्मी गीत सुनते हैं, कुछ लोग भजन सुनते हैं, और मैं संस्कृत गीत सुनती हूँ।
1: हमारे श्रोताओं को गीत सुनाते जाइए उनको।
0: कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। धन्यवाद, फिर किसी दिन और मौका मिलेगा तो पूरा गाना आप लोगों को सुनाएंगे।
1: जी मैडम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। आज के दौर में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते हम अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा केंद्रित हो गए हैं, ऐसे में हमें वापस अपने जड़ों की तरफ लौटने की ज़रूरत है। सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है और संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

0: तो इस दिशा में संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा एक आयोजित की जा रही है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के द्वारा। मैडम, क्या है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा विस्तृत रूप से। सबसे पहले तो यही कि ये प्रतियोगिता आयोजित कराने का मकसद क्या है?
1: सर, संस्कृत जो है बड़ी ही वैज्ञानिक और विशिष्ट भाषा रही है, हमारी देववाणी रही है।
0: जी,
1: उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम जो है संस्कृत भाषा के संवर्धन और उत्थान के लिए छात्रों को, नई पीढ़ियों को, अपने आने वाले जो युवा हैं उनको संस्कृत की ओर प्रेरित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
0: जी,
1: यह जो प्रतियोगिता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जो आयोजित की जा रही है, यह संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए की जाती है। दूसरा, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। तीसरा जो है, इनसे छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है कि बालकों में कौन कौन सी क्षमताएं, जैसे कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा बोल सकता है लेकिन गा नहीं सकता, वहीं संस्कृत गीत प्रतियोगिता जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गीत के माध्यम से बहुत अच्छा गा सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं उतना अच्छा। तो ये बच्चों की अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं, बोलना, गाना, सुनाना, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उनको संवर्धित करता है।
0: ये तो हमेशा ही होता है कि कुछ बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गीत पढ़ सकते हैं, कुछ ऋचाएं पढ़ सकते हैं अच्छे तौर पर। तो ये अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और उनको सबको मौका दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता के चलते। तो इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर हम जाएं तो क्या इसका प्रारूप है और कब से कब तक ये आयोजित की जा रही है?
1: संस्कृत प्रतिभा खोज की जो प्रतियोगिताएं हैं यह सबसे पहले जनपद स्तर पर आयोजित होती है। फिर जनपद स्तर पे जो बच्चा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है उनमें से दो बच्चे जो हैं वो मंडल स्तर पर आते हैं।
0: जी,
1: मंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को दिया जाता है, वहां उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि भी दी जाती है, लेकिन मंडल स्तर से प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान वाला बच्चा राज्य स्तर पर जाता है।
0: पहले जनपद स्तर पर होगी, फिर वो आगे अगर वहां से जाता है कोई तो मंडल स्तर पर फिर वो कम्पीट करेगा और उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाएगा।
1: हाँ जी, फिर वह प्रदेश स्तर पर जाएगा।
0: तो इसमें फिर जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक आयोजन होना है?
1: देखिए, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी जो हैं वो किन किन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ। पहली प्रतियोगिता है संस्कृत गीत प्रतियोगिता जो हमारी जनपद स्तर से आरंभ होगी। दूसरी प्रतियोगिता है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर तीनों स्तरों पर आरंभ होगी। बाकी की जो प्रतियोगिताएं हैं ये प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आहर्ता प्रतियोगिता होगी इनकी। उनमें जो बच्चा स्थान ग्रहण कर लेगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वह बच्चा मंडल स्तर पर आएगा। तो तीसरी प्रतियोगिता है हमारी श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ, अमरकोश कंठस्थ पाठ, छठे नंबर पर है लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ, सातवें नंबर पर है तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ। इन प्रतियोगिताओं के लिए जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हैं इनके आवेदन 15 अप्रैल 2025 से आरंभ हो चुके हैं और 20 मई 2025 तक आवेदन हो सकते हैं।
0: 15 अप्रैल से 20 मई तक आवेदन किया जा सकता है। अच्छा, जो आपने बताया कि ये जो प्रतियोगिता है इसमें ऑनलाइन अर्हता है
1: जी,
0: तो इसका स्वरूप क्या है? मतलब
1: नहीं, संस्कृत गीत प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, इनमें बच्चे ने जैसे आवेदन किया तो आवेदन करने के बाद में हर जनपद संयोजक के पास में उस बच्चे का डाटा आ जाता है, उसका मोबाइल नंबर आ जाता है, उसका खाता संख्या आ जाती है, पूरी डिटेल बच्चे का आ जाता है। अब जनपद संयोजक जो है उन बच्चों का एक ग्रुप बनाकर या किसी भी तरीके से उनको सूचना देता है कि किस तिथि में प्रतियोगिता का आयोजन होना है, कौन से स्थान पर और कितने बजे प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। तो ये तो हुआ जनपद वाली प्रतियोगिताओं का। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आहर्ता प्रतियोगिता। इसके लिए क्या होता है कि संस्कृत संस्थान के जितने भी जनपद संयोजक है और जो हमारी कार्यकारी समिति है उसके पास में उन बच्चों का डाटा आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास में संस्कृत श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता है
0: जी,
1: इसके लिए डाटा हमारे पास में आया तो हम ऑनलाइन गूगल मीट पे इन सभी बच्चों को उसका ग्रुप बनाकर, कम्युनिटी ग्रुप बनाकर सूचना भेज दी जाती है, एक तिथि निश्चित कर दी जाती है जिसमें हमारे पास में 3 निर्णायक मंडल भी होते हैं, संयोजक भी होते हैं और हम उन बच्चों की वो प्रतियोगिता आरंभ करते हैं
0: जी।
1: यह कार्यक्रम चलता है लंबा, थोड़ा समय लगता है। अब वहां से हम

0: जो
1: देख
0: उसमें
1: लेते हैं,
0: प्रतियोगी भी ज्यादा होंगे।
1: ज्यादा होते हैं, तो
0: जी
1: वहां से बच्चे जो है छट जाते हैं। इसमें ज्यादातर संस्कृत पाठशालाओं के बच्चे होते हैं, गुरुकुल के बच्चे होते
0: कॉम्पीट
1: हैं।
0: तो कोई भी कर सकता है, प्रतिभाग तो कोई भी कर सकता है।
1: आवेदन के लिए कोई सीमा नहीं है, आईसीएसई बोर्ड का भी कर सकता है, सीबीएसई बोर्ड का भी कर सकता है, यूपी बोर्ड का विद्यार्थी भी कर सकता है, लेकिन बच्चे में वो एबिलिटी होनी चाहिए,
0: जी
1: संस्कृत के श्लोक जो है वो कंठस्थ होने चाहिए।
0: तो ये प्रतियोगिताएं आपने शुरुआती दौर में छटनी कर ली, जनपद स्तर पर फिर आयोजन कर लिया, फिर मंडल स्तर पर आयोजन कर लिया, फिर उसके बाद उनका राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसके दौरान बच्चे आगे के चरण में जब जाते हैं तो उनको यात्रा भी करनी पड़ेगी, यात्रा में खर्चे भी आएंगे, भोजन पानी है।
1: जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जो है बच्चों को जलपान व्यवस्था होती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, कहीं कहीं मोमेंटो वगैरह भी दे दिया जाता है
0: जी
1: आधार
0: प्रोत्साहन
1: पर
0: के लिए।
1: प्रोत्साहन के लिए।
0: जी
1: जनपद स्तर पर इस बार केवल दो प्रतियोगिताएं हैं और हर विद्यालय से एक प्रतियोगिता में चार विद्यार्थी

0: में जो है बच्चों को जलपान व्यवस्था होती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, कहीं कहीं मोमेंटो वगैरह भी दे दिया जाता है
1: जी,
0: दार
1: प्रोत्साहन
0: पढ़ाकर
1: के लिए
0: प्रोत्साहन के लिए।
1: जी।
0: जनपद स्तर पर इस बार केवल 2 प्रतियोगिताएं हैं और हर विद्यालय से एक प्रतियोगिता में 4 विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही जनपद स्तर पर 3 जो है सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: छात्रों को दिए जाएंगे। इसके साथ जनपद मंडल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। मंडल और राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को उनका यात्रा व्यय दिया जाता है। राज्य स्तर पर पहुंचने वाले अभिभावक या शिक्षक जो साथ जाते हैं, एक विद्यार्थी के साथ में एक अभिभावक, उनके रहने उनके खाने की व्यवस्था और उस विद्यार्थी का किराया और एक अभिभावक का किराया जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उस बालक के खाते में भेजता है।
1: अच्छा, वो व्यय करना पड़ेगा उन्हें, बाद में खर्चे की राशि जो है वो उनके खाते में आएगी।
0: खाते में आएगी।
1: जी
0: इस बार एक और चीज नहीं जोड़ दी है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में, जिसको हम छात्रवृत्ति भी कह सकते हैं या फिर बच्चों का भाई मनोबल बढ़ाने के लिए, कि जो हमारी ये जो प्रतियोगिता है ना अष्टाध्यायी थोड़े
1: जी
0: जटिल सी है, तो इन प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान, 3 सांत्वना पुरस्कार,
1: जी
0: 6 बच्चों को मिल गया इनाम। इसके बाद में 7वें से 26वें स्थान को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे
1: सभी को,
0: छात्रवृत्ति के रूप में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा, ये जो एक आपने बताया कि कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए है, 12th के बाद या कोई अगर ग्रेजुएट है उनके लिए भी क्या कोई
0: जी
1: ऐसी प्रतियोगिताएं हैं, उनके
0: जी
1: बारे में भी थोड़ा।
0: इससे पहले युवा वर्ग में गीत आता था, लेकिन इस बार क्या है, युवा वर्ग में संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी है।
1: जी
0: जो बीए या एमए का विद्यार्थी या बीए समकक्ष
1: स्नातक
0: स्नातक
1: होने
0: और
1: चाहिए।
0: स्नातकोत्तर जो विद्यार्थी है, वो
1: जी
0: संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता और संस्कृत श्रुत लेखन प्रतियोगिता। श्रुत लेखन अर्थात इमला
1: श्रुत
0: जिसे
1: लेखन,
0: कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी जी इमला,
0: वहाँ जजेस होंगे, वो माइक से अनाउंस करेंगे, बच्चा सुनेगा और
1: और फिर
0: लिखेगा,
1: लिखेगा।
0: फिर उस प्रतियोगिता का निर्णय जो है निर्णायकों के द्वारा कि बच्चा सुनकर कितना शुद्ध लिख पा रहा है।
1: जी, तो ये सीनियर क्लासेस के
0: ये
1: लिए है,
0: सीनियर क्लासेस
1: स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए।
0: जी
1: उनके लिए भी जो धनराशि है पुरस्कार की, उसमें कोई बदलाव है या वही रहेगी?
0: नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, जनपद स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को 1,000 रुपए राशि है,
1: जी
0: मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 3,000 रुपए राशि मिलती है, राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए वितरण किए जाते हैं।
1: ये 11,000 की जो पुरस्कार राशि है वो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मिल गई,
0: जी
1: द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को?
0: जी जनपद पर द्वितीय स्थान है 800 रुपए, मंडल पर द्वितीय स्थान है 2,000 रुपए
1: जी
0: और राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान की राशि है 7,000 रुपए। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर तृतीय स्थान की राशि है 700 रुपए, मंडल पर तृतीय स्थान की राशि है 1,000 रुपए और राज्य स्तर पर तृतीय स्थान के विद्यार्थी की राशि है 5,000 रुपए।
1: 5,000 रुपये तृतीय स्थान के लिए भी है, और बाद में जो प्रतियोगी हैं
0: जी
1: 26 तक,
0: जी
1: उनको
0: उनके लिए,
1: भी पांच
0: उनको
1: हजार रुपये की छात्रवृत्ति एक मुश्त मिलेगी।
0: जी वो इसलिए किया है, यह नियम इस बार लागू किया है कि जैसे हम छात्रवृत्ति के जो आवेदन लेते हैं तो उसमें बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी रह जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके इतने श्लोकों को पढ़ा, इतने संस्कृत के ग्रंथों को, अष्टाध्यायी जैसे
1: जाहिर सी
0: कठिन,
1: बात है कि जब वो ऐसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है
0: तो
1: तो कहीं
0: उसको
1: ना कहीं उसकी जो मेहनत है, तैयारी है,
0: जी
1: उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और उसके लिए ये सांत्वना पुरस्कार राशि जो है 5,000 की रखी गई है।
0: जी कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी जो है हड़बड़ी में या कोई परिस्थिति रही है ऐसी, भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं,
1: जी
0: तो कोई अपना वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस
1: परफॉर्म नहीं कर
0: नहीं
1: सकता
0: कर सकता,
1: जी।
0: तो बच्चा निराश ना हो इसलिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने ये एक नई पहल शुरू की है, छात्रवृत्ति योजना।
1: चलिए, ये बड़ी अच्छी एक संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ ने जो पहल की है, उसका हमारे जो श्रोतागण हैं वो सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये थी डॉक्टर वर्षा रानी, जिन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व, संस्कृत भाषा के संरक्षण, उसके संवर्धन के बारे में हमसे बात की। आपने महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है इस प्रतियोगिता के बारे में, हमारे साथ जो अनुभव हैं वो साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के

अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर वर्षा रानी से अनिंद्र सिंह की ये बातचीत। विषय था संस्कृत संरक्षण और संवर्धन, क्यों और कैसे। श्रोताओं, इसी बातचीत के साथ कार्यक्रम आज के अतिथि यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है देश गान।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भारत भूमि महान देशगान। इसी के साथ ही ये देशगान संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

गीत गुंजन। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल का ये गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है आनंद मिलिंद की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल का ये गीत। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म जुर्म से। आवाजें हैं कुमार सानू साधना सरगम की, शब्द रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है राजेश रोशन की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म जुर्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। शब्द रचना थी इंदिवर की, संगीत रचना थी राजेश रोशन की। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आशा भोसले, शब्बीर कुमार, कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म घायल का ये गीत। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, शब्बीर कुमार, कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म घायल का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने, धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। और इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है,

0: उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
1: राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, 5:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा होगी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, आज का सवाल होगा, खेल दुनिया में बात होगी डिजिटल कोच बनता AI, संभावनाएं रक्षा क्षेत्र में कैरियर, और वार्ता है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में मैंग्रोव की भूमिका। वार्ताकार हैं श्रीजल नगावाइच। इसके साथ ही 6 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामी लोग। इसमें चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती के लाभ। वार्ता है बाजरे की उन्नत खेती। वार्ताकार हैं प्रेमपाल जादौन। इसके साथ ही ग्रामी लोग कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत होगी हमारी लोक धरोहर, साथ ही मौसम पर भी बातचीत होगी।

शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। इसमें चर्चा का विषय है कारगिल विजय दिवस, और साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप वार्ता सुन सकेंगे तपती धरती जिम्मेदार कौन। इस वार्ता की वार्ताकार है असीम आनंद। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आज का प्रश्न ज्ञान सागर नई खोजें। साथ ही और भी तमाम बातें की जाएंगी इस कार्यक्रम में, सेहत टिप्स, फिल्म संगीत पर भी चर्चा होगी।

आज शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। 7:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आप सुन सकते हैं वार्ता भारतीय पराक्रम का जीवंत दस्तावेज कारगिल। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमी आधार निडर।

शाम के 7:31 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी जिसे आप सुन सकेंगे। इसमें वतन के वीर प्रतिभागी कवि शिखा सिंह, मोहित वर्मा, अतुल पुंडीर, एलिश अवस्थी, इनको आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे।

शाम के 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 8:30 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत। इसके साथ ही 9 बजे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, 9:15 पर उर्दू में समाचार सुनेंगे।

और आज शाम 10 बजे आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवार ये संगीत सभा, और 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। श्रोताओ, सुर संध्या के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म लगान का ये भजन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म लगान का ये भजन। अगला भजन सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म तेरे नाम से।

साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म तेरे नाम का ये गीत। आइए अब सुनते हैं चार धाम फिल्म का ये गीत। आवाज़ है हरि हरन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चारधाम फिल्म का भजन हरिहरन और साथियों के स्वर में। इस भजन को लिखा था उदय शंकर पाणी ने और धुन बनाई थी सुरेंद्र कोहली ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा भजन लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार प्यारे युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम करते हैं आपसे ढेर सारी बातें और साथ में करते हैं खूब सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो केवल शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य से जुड़ा है। जरा एक पल को सोचिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वह उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या उसकी आधुनिक तकनीक? शायद इनमें से

कुछ भी नहीं। किसी भी देश की असली ताकत उसके एजुकेटेड और स्किल्ड सिटीजन्स होते हैं। जब शिक्षा मजबूत होती है तो इकोनॉमी मजबूत होती है, समाज आगे बढ़ता है और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। शायद इसी सोच के साथ आज भारत अपनी हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, हम सभी ने ये कभी ना कभी महसूस तो किया होगा कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना अब सफलता की कुंजी नहीं है। आज की दुनिया में स्किल्स, इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। कंपनीज अब केवल डिग्री नहीं देखती बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी भी देखती हैं। इसीलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी समय के साथ बदलना होगा और इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि नई व्यवस्था का उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना है, ताकि संस्थान कागजी प्रक्रियाओं में कम और शिक्षा की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सके। साथियों, ज़रा अपने छात्र जीवन को याद कीजिए। क्या आज भी वही विषय और वही तरीके आने वाले समय की नीड्स को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आने वाला समय AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन का है। इसीलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के करियर और बदलते जॉब मार्केट के लिए भी तैयार करे। इसी सोच के तहत मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग पर भी जोर दिया जा रहा है, यानी एक छात्र अपने मुख्य विषय के साथ साथ दूसरे विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सके। इससे उसकी सोच व्यापक होगी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो आज के हर एक क्षेत्र में बेहद आवश्यक है। लेकिन वही बात है कि हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। तो दुनिया के विकसित देशों ने शिक्षा और अनुसंधान में लगातार निवेश किया है। नई खोजें, नई तकनीक और नए समाधान वहीं से तो निकलते हैं। यदि भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनना है तो विश्वविद्यालयों में रिसर्च इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा, साथ ही इंडस्ट्री अकेडमियां कोलेबरेशन भी बढ़ाना होगा ताकि छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। आखिरकार शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना तो नहीं है बल्कि जीवन और करियर दोनों के लिए बच्चों को तैयार करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना रहे हैं जो बच्चों को सिर्फ उत्तर याद कराए या फिर उनसे सही सवाल पूछना भी सिखाए? क्योंकि आने वाले समय में वही देश सबसे ज़्यादा आगे होंगे जिनके नागरिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएंगे और बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलकर विकसित करेंगे, खुद को लगातार इन्हेंस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये कहा जा सकता है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान केवल एक विधेयक नहीं है बल्कि भारत की हायर एजुकेशन को भविष्य के अनुरूप बनाने की एक इम्पॉर्टेंट पहल है। यदि इसे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिवनेस और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के साथ लागू किया गया तो भारत शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन के क्षेत्र में एक नई वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकता है। तो श्रोताओं, जब सीखने की आज़ादी मिलती है तो नए विचार जन्म लेते हैं और सपनों को उड़ान मिलती है। इसी खूबसूरत एहसास को शब्दों और सुरों में पिरोता है ये मज़ेदार गीत।

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

0: श्रोताओं, अभी हमने बात की थी भारत के बारे में। अब विकसित भारत की परिकल्पना केवल आधुनिक शिक्षा, तकनीक और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। सच्चा विकास वही है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। यदि हमारी नदियाँ, वन, समुद्र और जैव विविधता सुरक्षित रहेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित भारत का निर्माण संभव होगा। इसी सोच के साथ अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे पर्यावरण और तटीय जीवन दोनों के लिए बेहद अहम है। आइए जानते हैं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मैंग्रोव की भूमिका, एक वार्ता के द्वारा, और वार्ताकार हैं श्रेजल नगाइच।
1: शांत नीले पानी में जटिल जड़ों वाले हरे पेड़ उभर कर सामने आते हैं और जानवरों की एक श्रृंखला से भरे जंगल का रास्ता दिखाते हैं। सुनने में यह किसी फिल्म के शुरुआती दृश्य जैसा लगता है ना, लेकिन दोस्तों यह वास्तविकता है, मैनग्रोव इकोसिस्टम की वास्तविकता। हम सब इस बात से तो परिचित हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए वन कितने आवश्यक हैं, पेड़ कितने आवश्यक हैं, किंतु अधिकांश पेड़ खारे पानी में जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम मैनग्रोव पेड़ों की बात करें तो ये प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं और यही इन्हें सभी वनों से अलग बनाता है। ये न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मछलियों से लेकर जानवरों तथा पक्षियों को आवास प्रदान करते हैं और हमें विभिन्न संसाधन भी प्रदान करते हैं। केवल संसाधन या आवास ही क्यों दोस्तों, मैनग्रोव वनों का ह्यूमन सेफ्टी में भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समुद्र और महासागरों से उठने वाले खतरनाक चक्रवातों और सुनामियों से भी हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर हम तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में मैनग्रोव की भूमिका की बात करें तो वह अतुलनीय है। दरअसल दोस्तों, मैनग्रोव भले ही मीथेन गैस उत्सर्जित करता है, लेकिन ये कार्बन भी सिंक करते हैं, जिसे हम नीला कार्बन कहते हैं। मैनग्रोव वन ग्रह की सतह का नाम मात्र कवर करते हैं, नाम मात्र, लेकिन ये अन्य वनों की तुलना में कई गुना कार्बन सिंक करते हैं, जिस कारण मैनग्रोव वनों का योगदान जलवायु परिवर्तन

0: शमन में भी होता है, जैसे कि अपने बायोमास और मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करके वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति भी धीमी पड़ती है। साथियों, यही तो खास बात है हमारी प्रकृति की कि ये अपना संतुलन स्वयं ही बना लेती है। इसी के साथ साथ ये वन जैव विविधता का भी केंद्र है। ये बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्ट्रोएराइन यानी खारे पानी के मगरमच्छ और न जाने कितनी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। जैसे जैसे मैनग्रोव वनों का सफाया होता जा रहा है, बंगाल टाइगर जैसी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। साथियों, मैनग्रोव वन प्रणालियां प्रकृति का एक चमत्कारी वरदान ही तो हैं, क्योंकि न केवल ये तटीय इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, बल्कि इनकी जटिल जड़ें और हरे भरे वनस्पतियों का नेटवर्क पानी से नाइट्रेट, फॉस्फेट तथा दूसरे प्रदूषकों को भी फिल्टर करते हैं। स्थानीय समूह और जो लोग नदियों, झीलों या आसपास के जल निकायों के पास रहते हैं, वे पेड़ों द्वारा जल की गुणवत्ता के रखरखाव से भी सुरक्षित रहते हैं। मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र न केवल देखने में अद्भुत लगते हैं, बल्कि इनके द्वारा मिलने वाले लाभ और संसाधन भी अनेक हैं। चाय और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होने वाली पत्तियों से लेकर दवा के रूप में प्रयोग होने वाले पौधों के अर्क तक कई तरह के संसाधन मौजूद हैं। लाखों लोग आय, भोजन, खुशहाली के लिए मैनग्रोव पर निर्भर करते हैं। यह अनुमान है दोस्तों कि वैश्विक मछली पकड़ने का 80%, जी हाँ दोस्तों, 80% हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैनग्रोव वनों पर ही निर्भर करता है। हमारे देश में सबसे अधिक मैनग्रोव बंगाल में है और यहाँ मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल सुंदरबन, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। मैनग्रोव के संरक्षण के रास्ते में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं दोस्तों, जैसे जलवायु परिवर्तन, समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर, प्रदूषण, वन कटाव, अत्यधिक मत्स्यायन, जागरूकता और संरक्षण का अभाव और न जाने कितनी चुनौतियां। इसलिए मैनग्रोव की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले वर्ष मिस्टी योजना की भी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था मैनग्रोव इकोसिस्टम को रिवाइव करना। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कई अन्य कदम भी जरूरी हैं, जैसे वनों की कटाई पर रोक, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, मैनग्रोव को गोद लेने का कार्यक्रम जिसमें कुछ संस्थाएं या कुछ व्यक्तियों का समूह मैनग्रोव के कुछ हिस्सों को अपने संरक्षण में रखता है, उनकी देखभाल करता है। ऐसे महत्वपूर्ण कदमों से मैनग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में आप हम सभी मदद कर सकते हैं, क्योंकि साथियों, ये वन तटीय वन्य जीवों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय है, उन लोगों के लिए जो जंगल को अपना घर कहते हैं।
1: साथियों, अभी आपने जाना कोस्टल इकोसिस्टम में मैंग्रोव्स की क्या भूमिका होती है, अगर ये ना हो तो क्या हानियां हो सकती हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं अगले सेगमेंट खेल दुनिया में। अब जरा आप सोचिए एक बारी, रात के 11 बजे हैं, कल आपका पेपर है और अचानक एक सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा, कोई टीचर भी नहीं है, सारे दोस्त सो चुके हैं, और ऐसे में अगर कोई डिजिटल कोच हो जो आपकी भाषा में आपकी गति से और बिना थके आपके हर सवाल का जवाब दे, तो वो कैसा होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन आज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इस कल्पना को धीरे धीरे हकीकत में बदला जा रहा है। यही वजह है कि आज AI को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक लर्निंग कंपेनियन और डिजिटल कोच के रूप में भी देखा जा रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक इंटरनेट हमें सिर्फ नॉलेज देता था, लेकिन आज AI केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि समझाता है, प्रैक्टिस कराता है, गलतियों को पहचानता है और सीखने का तरीका भी सुझाता है। अगर किसी विद्यार्थी को गणित कठिन लगती है तो AI उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार कर सकता है। किसी को इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन सुधार सकता है, उसको सिखा सकता है, और अगर किसी को कोडिंग सीखनी हो तो भी एक पर्सनल ट्यूटर की तरह

आपको ट्यूशंस दे सकता है, आपकी पर्सनल ट्यूटर की तरह वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और हाल ही में पंजाब ने स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक AI को चरणबद्ध तरीके से मुख्य विषय के रूप में शामिल करने की दिशा में कदम उठाया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे शुरू से ही भविष्य की तकनीकों को समझें और उनका जिम्मेदारी से उपयोग करें। इतना ही नहीं, देश में शिक्षकों को भी AI टूल्स के बेहतर उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य बिल्कुल साफ है, AI को शिक्षक का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि असिस्टेंट बनाना है। लेकिन श्रोताओं, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या AI सचमुच एक शिक्षक की जगह ले सकता है? शायद कभी नहीं, क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि जीवन जीना सिखाता है। वे छात्र की भावनाओं को समझता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, मुश्किल समय में उनको हौसला देता है। AI तेज हो सकता है लेकिन उसमें संवेदनाएं नहीं हो सकती। इसीलिए भविष्य की सबसे अच्छी तस्वीर वही होगी जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के पार्टनर बनकर काम करें। AI की सबसे बड़ी ताकत है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग होती है, कोई एक बारे में समझ जाता है तो शायद किसी को बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। AI हर छात्र की लर्निंग पैटर्न को समझकर उसी के अनुसार स्टडी मटेरियल, क्विज और फीडबैक तैयार कर सकता है। अगर विद्यार्थी बिना सोचे समझे हर उत्तर के लिए केवल AI पर निर्भर होने लगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा AI कभी कभी हेलोसिनेशंस यानी गलत या भ्रामक जानकारी भी दे सकता है। इसीलिए AI से मिली जानकारी को चेक जरूर करें और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करने हमेशा कोशिश करें। और इसी विषय पर वैश्विक स्तर पर गंभीर चर्चा हो रही है। साथियों, में याद रखना होगा कि तकनीक जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लेके आती है। AI का उद्देश्य हमारी सोचने की क्षमता कम करना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है। जब तकनीक और मानवीय संवेदनाएं साथ साथ चलती हैं, तभी सच्चे अर्थों में ज्ञान का विस्तार होता है और सीखने का सफर और भी प्रेरणादायक बन जाता है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय है एक ऐसे गीत का जो सपनों को नई उड़ान देने, आगे बढ़ने और अपनी संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा देता है।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन भान शान या की

करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं,

दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो।

लाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी

0: बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो।
2: श्रोताओं, गीत के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जब भी देश सेवा की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले भारतीय सैनिकों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सर्विस, डिसिप्लिन, लीडरशिप और सम्मान से भरा एक ऐसा करियर है जो आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर देता है। आज युवाओं के लिए भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पार्लियामेंट्री फोर्सेज में करियर बनाने के कई अवसर उपलब्ध हैं। अगर आपने 12th पास की है तो आप NDA का अधिकारी, NDA अधिकारी बनने का एक प्रमुख मार्ग है। वहीं ग्रेजुएशन के बाद CDS और तकनीकी छात्रों के लिए TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम और युवाओं के लिए अग्निवीर स्कीम जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार सही विकल्प चुनकर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आपका सपना रक्षा सेवाओं में जाने का है तो आज से ही रोजाना व्यायाम करने की आदत डालें, करंट अफेयर्स पढ़ें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें और समय समय पर मॉक टेस्ट व SSB की तैयारी भी जरूर करते रहें। तो यदि आपके भीतर भी देश सेवा का जज्बा है और आप अपने सपनों को अनुशासन, साहस और समर्पण के साथ पूरा करना चाहते हैं तो रक्षा क्षेत्र में आपके लिए संभावनाओं से भरा एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। और आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान से देश की रक्षा करते हुए इतिहास रचा। उनका पराक्रम हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हुए अब समय है एक ऐसे गीत का जो हौसले, समर्पण और देशभक्ति की भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

0: राम राम किसान भाइयों बहनों, और बताइए कैसे हैं आप सब और आपकी खेती किसानी। वैसे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, अगर हम अपनी बात करें, यानी आपका ये साथी देवेंद्र अपनी बात करे, तो हमारे तो धान की रुपाई भी हो गई है और बाजरे की बुआई भी। लेकिन साथियों, आप लोगों ने बुआई के काम कर लिए कि नहीं? वैसे आपको एक अंदर की बात बताएं तो भैया, इस बार हमने अपनी खेती में कुछ नया किया है, यानी कि कुछ प्राकृतिक तरीके से करना शुरू किया है, और इसके लिए हमें जागरूक किया एक प्रगतिशील किसान साथी जगदीश जी ने।
1: किसान साथियों नमस्कार। देखिए, आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास बैठे हैं, बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जगदीश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आया प्राकृतिक खेती को लेकर?
2: देखिए, ऐसा सबसे बड़ा सहयोग तो रहा हमारा हॉर्टिकल्चर का,
1: उद्यान विभाग
2: ने हमको 2002 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली भेज दिया। वहाँ से हमने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने फिर हमको बरेली बिलवा फार्म में भेजा, उरई में भेजा, झांसी में,
1: प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए। तो वहाँ से आपने प्रेरणा लेके आए?
2: हाँ, वहाँ से प्रेरणा लेके आए। वो उस समय CPP नैदा बर्मी कम्पोस्ट काउहान जो बनते थे।
1: अच्छा,
2: हाँ, तो वो भी थे प्राकृतिक।
1: तो आपने कहना मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा राजा टोनी की देना। अच्छा, प्राकृतिक खेती में उत्पादन में कितनी कमी आती?
2: प्राकृतिक खेती हम लगभग मान के चलिए 25 एकड़ जमीन है, उसमें 4 एकड़ के करीब प्राकृतिक खेती।
1: अच्छा, 4 एकड़ आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छा, उत्पादन में क्या अंतर मिला और स्वाद में, उसके शुद्धता में?
2: शुरू शुरू में तो कुछ झटका लगा, लेकिन धीमे धीमे अब जो है प्राकृतिक ज्यादा अच्छी हो रही है इससे केमिकल से।
1: लागत में कितनी बढ़ी आपने देखा?
2: केमिकल की ज्यादा लागत है और प्राकृतिक की लागत बहुत कम, थोड़ी मेहनत है, लेकिन किसान करना नहीं चाहता। अगर करे तो इसमें अगर उसे एक ढल जाए, बढ़िया आनंद है।
1: अच्छा, वही आनंद बताइए आप।
2: हैं?
1: वही आनंद बताइए।
2: हम पहले तो शुरू में जब खेती से दुखी थे, वो पहले सुनिए, तो उस समय हम जब खेती से दुखी हो गए तो मैंने एक बार खेती छोड़ दी। फिर हमारी घरवाली ने हमें बड़ा सहयोग दिया, हिम्मत बंधाई मामनी जी ने, तो उसके बाद फिर बढ़ाई प्राकृतिक खेती की, तब उसमें फिर सुधार हो गया। तो खैर, ये है 1 एकड़ से लगभग 8 एकड़।

0: जमीन हो गई और शहर में 5 मंजिल का मकान बन गया।
1: पर खेती से ही,
0: खेती से ही है सब। बच्चों की दोनों की शादी अच्छे ढंग से हुई, बिटियों को दोनों को 4 व्हीलर दे दी
1: शादी में,
0: और हमारे पास ये देखो रेटा खड़ी।
1: ना ना ना, वो तो आप प्रगतिशील किसान लग ही रहे हैं, हमने वही तो इसलिए कह दिया पहले।
0: और नगर में एक प्लाट शहर में और है, 2 इसका स्वामी है।
1: कहने का मतलब आपने सब खेती किया है, तभी आजकल खेती का क्रेज बढ़ा है। और क्या परिवर्तन आपको लगता है, लागत में कमी आती है तो कैसे, जो नया किसान कोई शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू करे?
0: देखो नया किसान तो आप जब आएगा तो उसको सब जैविक पद्धति पे आना पड़ेगा, कोई जीवामृत बनवाना पड़ेगा।
1: जीवामृत और गोबर की खाद, हरी खाद?
0: देखो गोबर की खाद अगर आप भूरे को डालियो खेत में फंगस आएगा, इसको आप का करो डीकम्पोज कर लीजिए।
1: मतलब कैसे?
0: मतलब उसको 1.5 फीट ऊंचाई में एक जगह बगराए दे,
1: मतलब फैला दीजिए।
0: हाँ, फैलाए के उसमें आप जीवामृत डाल दीजिए, सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, पोटेशियम लेकानी है, मेटाराजियम है, बुवेरिया बेसी आना है।
1: तो ये कहाँ से मिलेंगे
0: ये सब? आपको कोशिश करोगे, कुछ प्राइवेट फर्मों से, कुछ सरकारी मिल जाती है। अब गवर्नमेंट के पास इस समय बुवेरिया बेसी आना, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, व्यवस्था कर लीजिए। इनको सबको घोल के और आप भूरे के ऊपर छोड़ दीजिए और ढक दीजिए, तो धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए।
1: अच्छा, ताजा गोबर होना चाहिए, पुराना होना चाहिए?
0: देखो ताजा पुराना किसी भी तरह ऊंचा नीचा है, और उसमें जब आप इसे छोड़ेंगे तो डीकम्पोज अपने आप बैक्टीरिया कर देगा।
1: अच्छा, फिर उसको
0: 1.5 महीने बाद फिर पलट दीजिए, फिर पानी छोड़ दीजिए, एक बार नीचे को ऊपर कर दो, अच्छी तरह से सड़के बहुत चाय कैसी पत्ती बन जाएगी। और मैंने अब एक खेत खरीदा था 11.5 का, उसमें 27 ट्रॉली गोबर खाद पड़ी। अगर उसमें हम डीकम्पोज कर लें तो हमारे पास 5 ट्रॉली बहुत है,
1: तो लागत में कमी,
0: लागत में कमी।
1: स्वाद
0: भैया जैविक वाले ही जानते हैं, बहुत ही अंतर पड़ता है। हमारे खरबूजा थे, हमारे विधायक जी एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मंगाए।
1: अच्छा,
0: स्वाद की मिठास के चक्कर में।
1: अच्छा, प्राकृतिक खेती में कीटों का क्या रहता है, कीट कितने लगते हैं?
0: तो प्राकृतिक खेती में ना के बराबर लगते हैं, और लगते हैं तो प्राकृतिक तरीका से मर भी जाते हैं। ये आपके जैसे हम नीमस्ट है, इसके अलावा भी आप मेटाराजियम से मारो, बुवेरिया बेसियाना है, इससे सूढ़ी है, दीमक है, भुनगा है, बटीसियम लेकानी से आपकी जितनी माइट है, थिप्स है, जेसेट है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और आपके जो फंगस है,
1: बीज जो है जैविक प्राकृतिक बीज हम कैसे किसे कह सकते हैं? आजकल तो हाइब्रिड बीज चलते हैं, प्राकृतिक बीज कैसे?
0: और हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, अगर प्राकृतिक तरीका से करोगे तो उनकी गुणवत्ता बदल जाएगी, वो बीमारी रहित हो जाते हैं।
1: सिंचाई, जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो प्राकृतिक खेती से बताते हैं कि जल धारण करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है।
0: वो तभी संभव है जब जमीन में कार्बन आपका 2% से ऊपर होगा। जब कार्बन 2% से ऊपर होगा तो उसमें ह्यूमस होगा, ह्यूमस होगा तो केंचुआ का भोजन होगा, तो केंचुआ तो माटी की नस नस खोल देते हैं। जब तक इनकी नस नस जमीन की नहीं खोली है तब तक आपको पानी को सोख लेगा।
1: अच्छा, आज बहुत से लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा होती है, कुछ किसान भाई हमारे कहते हैं वो नहीं करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे?
0: देखिए पहले तो हम भी समझते थे खेती घाटे का सौदा है, समय मैंने गीत भी बनाए थे।
1: अच्छा अच्छा, ये कविता?
0: हाँ कविता,
1: तो सुनाइए थोड़ा उसके बारे में।
0: और समय तो मैं हार गया था।
1: अच्छा,
0: तब मैंने उसमें मायूसी ने गाना बनाया था कि खेती हो बते नैया मैं तो हार रहिया, अब लागत ने करत नैया मेरे कांप जिया, ओ दिन के बेरी ओ बछरा बछेरी, ओ दुर्गत फसल और होय घनेरी, के अब तो दशा बिगड़ रही मेरी, के बेरी रात सुअर ले ले गईया मैं तो हार रहिया, अब लागत ने करत नैया मेरे कांप जिया। इधर जब बैलों से जुताई करते थे धीमे धीमे वो ऐसी फैशन बन गई कि सभी ने बंद कर दिए, तो हम कहीं अकेले, हम रात में अकेले जाएं, पहले एक दूसरे का सहारा रहता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बैल जोताई छोड़े अब दीनी, और डीजल दे से भयो या धीनी, और कमर तोड़ महंगाई दीनी, के पग पग पे खर्च रुपया मैं तो हार रोया, अब खेती अब होवत नहीं मेरे कांप जिया, के कभू सूखा पड़े या तो भारी, और कभू बरसा बड़े फसल यो जारी, और फसल नीचे ऊंचे खरपतवारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: खरपतवार ऊपर बढ़ गए, जमीन नीचे, के डूबी लागत खेत के मैया मैं तो हार रहिया, खेती अब होवत नहीं मेरे कांप जिया, और रबी फसल को ओला पाला, वो इतन जन्नत कर देवाला, और झुलसा आलू करे बे

0: फसल होत नैया मैं तो हार रहिया, अब लागत न करत नैया मेरो कांप जिया। और फसल गर्मी की जब हम लगावे, पानी पता लिया सम्मान से धामे। और गैया साढ़े दिन नहीं खाए जावे, के खावत रात सुअर ले गैया मैं तो हार रहिया। खेती अब होवत नैया मेरो कांप जिया। और आसे आसे में भय दिवाली, इन साल जब घाटा पड़ गया सोची चलो अगली साल देखेंगे, फिर घाटा पड़ गया अगली साल देखेंगे, तब तक नहीं देख पाया तब हार गए। के आसे आसो में भय दिवाली, उत पैसा सरकारी ते ब्याहो को लाली। अब तो दशा भई है बदे हाली, के अब कुरकी है दो करैया मैं तो हार रहिया। खेती अब होवत नैया मेरे कांप जिया। दिन के बेरी ओ बछरा बछेरी, ओ बेरी रात सुअर ले ले गईया मैं तो हार रोईया।
1: हालत खराब हो गई आपकी, तो फिर आपको वो हिम्मत कहाँ से मिली, कहाँ से मोटिवेशन मिला?
0: तो हमारी भामनी जी बोली,
1: मतलब आपकी धर्म पत्नी
0: जी,
1: अच्छा
0: बोली ऐसा कीजिए किसान के घर में जन्म लेके किसान खेती करनी पड़ेगी, और तुम कहाँ का रहेगा 50 साल तक तो उम्र ऊपर हो रही।
1: जी जी जी।
0: अब इधर लड़कन को पढ़ाओ और तरीका बदल दे। तब उन्होंने हमको राय दी कि पहले आप जो यूरिया डालते हैं इस यूरिया को बंद कीजिए, बंद बिल्कुल तो नहीं कीजिए, संतुलित में कीजिए। हाँ, और जैविक तरीका से कीजिए,
1: प्राकृतिक तरीके को बनाइए।
0: प्राकृतिक बाद में आया, पहले जैविक। तब उन्होंने कहा कि अब हिम्मत हारो नहीं हमारे पिया।
1: कविता बना दी आपने?
0: हाँ
1: बना दिया मैंने।
0: चलिए सुनाइए। कि अब हिम्मत हारो नैया हमारे पिया, ओ खेती डट डट करो तुम सैया हमारे पिया। और कहा करे तेरो बचेरा बछेरी, और दुर्गत फसल न होए घनेरी। के अब तो दशा सुधर जाए तेरी, ओ करे कहा रात सुअर ले ले गई आई हमार पिया। अब हिम्मत हारो नहीं आई हमार पिया। उन्होंने हमको राय दी कि आपको सारे चक्की पहले मैं बनवा दीजिए, और भीतरी साइड में इसमें लगा दीजिए बमूर। तो उन्होंने हमको बताया कि सारे चक्की की मेड़ बंदे बाबा, और दो फुट दूरी बमूरी लगे बाबा। और झांकर छांटे तुम बेड़ा यड़ाबो, और फोड़ाए दे और बरवटी से मोतो रही आई हमार पिया। अब हिम्मत हारो नहीं आई हमार पिया। अब दूसरी और आपको आमदनी की व्यवस्था बता रही। तब उन्होंने बताई क्या कि 4 फुट दूरी गड्ढे चौ ओरी, आप खेत के चौतरफा 4 फुट दूरी पे, फुट गुलाई की ब्यास के,
1: अच्छा अच्छा
0: 1 फुट गहरे गड्ढे करवा दीजिए, और 4 फीट ही गैप दीजिए उसमें,
1: 4 फीट
0: गैप। तो इस तरह से 1 एकड़ में 100 गड्ढे बन जाते, और जब इसमें आप चक्राकार ईख लगाएंगे तो 1 गड्ढे में 100-100 गन्ने निकलते, मैंने गिने अपने में। हाँ, तो 100 गन्ने का मतलब 100 गड्ढे, 10,000 गन्ना 1 एकड़ में आसपास केवल हो गई। और 10 रुपया गन्ना 1 लाख की, और 20 रुपया गन्ना से नीचे बिकता नहीं तो 2 लाख हो सकते। 4 फुट दूरी गड्ढे चौरी, अब जैव भसम रसायन डारो थोरी, और रंग पिट विधि ईख चौरी। बरसात आ जाए इसकी पाती छील के बिठा से बांध दे जो के एक दूसरे, हाँ सपोर्ट इधर का होता है उधर का इधर हो जाए, के पाती छील बंधाए दे बैठैया हमार पिया। अब हिम्मत हारो नहीं आई हमार पिया। बरसात में क्या करो, चारे की व्यवस्था करने के 10 फुट लंबी जुनरी लगो बाबो, जुनरी ज्वार को कहते हैं, और बीटी कपास संग और देबो बाबो। बीटी कपास एक ऐसा कपास है जिसमें कोई रोग नहीं लगता, ज्यादा भुनगा वगैरह अलग सूरी नहीं लगती है। तो आपकी 1 एकड़ में 1 लाख की उसकी रुई भी हो सकती है, उसकी लकड़ी पलट दीजिए उसी में, और उसके बीच में 4 फीट की दूरी पर उसकी होती है तो उसमें उर्द भी निकल आता है।
1: बहुफसली खेती कर ली।
0: हाँ बहुफसली, इधर मक्की एक मक्का की, तो जब मक्का के भुट्टा निकलेंगे उस समय अरहर छोटी रहेगी, और जैसे ही भुट्टा रखवारी के काबिल होगा तब तक 15-20 दिन में अरहर बढ़ के भुट्टे को झांक लेती है, तो उसमें टुहिया नहीं पड़ती जैसे
1: तोता नहीं।
0: और 10 फुट लंबी जुनरी लगे बाबा, और बेटी कपास संग और देबो बाबा। मक्का तुअर बीच लाइन लगाबो, के मक्का को तुअर बचावे पिया हमार पिया। अब हिम्मत हारो नहीं आई हमार पिया, खेती डट डट करो तुम सही आई हमार पिया। तुम क्या

0: करके हमारा इंजन से दिवाला निकलता है। अरे गवर्नमेंट ने तो तमाम व्यवस्था कर दी, सोलर पंप लगाइए वो भी सचल, एक खेत पे ले जाइए दूसरे चक पे ले जाइए, बोरिंग अलग अलग हो और सचल वाहन पे जड़वा दीजिए, चाँग का चलाइए के बीचे चक्के सोलर पंप लगे बाबो और सोलर सचल वाहन जड़े बाबो, तो बौछारी सींच दिन में करे बाबो और रात सोबे कई रजैया हमार पिया, अब हिम्मत हारो नहीं आई हमार।
1: लोग कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे आपकी धर्म पत्नी जी का हाथ?
0: अरे साहब, उन्होंने काफी रास्ता हमको दी।
1: चलिए, और हम चाहते हैं कि हर पत्नी अपने पति का ऐसा ही साथ दे जैसे कि आपकी पत्नी ने दिया है। आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो साथियों, जैसा कि जगदीश जी ने अपने अनुभव साझा किए, आप भी प्राकृतिक खेती करना शुरू कीजिए और अपनी आय को दोगुना कीजिए। और हाँ, अभी हमारे जिन किसान भाइयों ने बाजरे की बुआई ना की हो, उनके लिए हमारे कार्यक्रम में बाजरे की उन्नत खेती के विषय में एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं प्रेमपाल जादौन जी।
3: उत्तर प्रदेश में बाजरा मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ व फर्रुखाबाद जिले में उगाया जाता है। बाजरा की उन्नत फसल उगाने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, हम जलवायु पर बात करते हैं। जलवायु आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। बाजरा में सूखा सहन करने की शक्ति ज्वार की तुलना में अधिक होती है। बाजरे की फसल की जल मांग सबसे कम 250 से 300 मिलीमीटर या हम कह सकते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यदि हमारे क्षेत्र में वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो बाजरा की खेती हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बाजरा की फसल जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाई जा सकती है। कपास की काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा व बलुई दोमट मृदा तथा कुछ स्थानों पर कंकरीली मृदा पर भी बाजरा की खेती को हम आसानी से कर सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी ठीक रहती है। अधिक उत्पादन के लिए बाजरा की उन्नतशील किस्मों का हम किस प्रकार चुनाव करें, तो बाजरा की फसल में परपरागण अधिकतर होता है, अतः जो भी नई उन्नतशील प्रजाति विकसित की जाती है वह अधिक समय तक शुद्ध नहीं रह पाती। नंबर एक, पूसा मोती, यह किस्म ICAR द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है। इससे 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है, 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। HB1 हाइब्रिड बाजरा वन, यह किस्म सन 1965 में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड बाजरा की किस्म है। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आगरा रीजन में प्राइवेट कंपनियों के जो सीड आ रहे हैं वो भी एक अग्रसर दिखाई दिए गए हैं। बायोसीड 8421, JK 2040, 9001, पायोनियर, महेको, MBN 151, हाइब्रिड HK 332, प्रोएग्रो 9402, JKBS 26 आदि, ये बीज आगरा क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक व अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। बीज दर, किसानों को अधिक उत्पादन देने के लिए या अधिक उत्पादन करने के लिए सदैव प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। बीज को बोने से पहले हमें हमेशा बीज उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए जैसे सेरिसान, थीराम, एग्रोसेन, GN, कैप्टन आदि रसायनों के द्वारा हम बीज को उपचारित करते हैं। एक कुंटल बीज में 250 ग्राम रसायन काफी रहता है। 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए 2 केजी पर हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है। पौधों की संख्या, अगर हम 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या देखें बाजरा की, वो 1,66,000 पर हेक्टेयर होते हैं। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक हमें बाजरा की बुवाई कर देनी चाहिए। बीज की गहराई की जो हम बात कर रहे हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर हमें बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम होता है, अतः उतली बुवाई ही लाभदायक होती है। बुवाई की विधि, बाजरे की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए पंक्तियों में बुवाई करना लाभदायक माना जाता है। बुवाई हम मशीन द्वारा भी कर सकते हैं, छिड़कवा विधि द्वारा भी हम बुवाई पंक्तियों में कर सकते हैं। खाद देने का समय, हम कह सकते हैं कार्बनिक खाद हमें बुवाई करने से 1 महीने पूर्व देना लाभदायक होता है। हमें बाजरा की खेती के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई, बुवाई के समय मृदा में पर्याप्त नमी का होना अत्यावश्यक है। समय समय पर अगर वर्षा ना हो तो 1 से 2 सिंचाइयां हमें बीच में भी करनी पड़ सकती है, जिससे फसल वृद्धि में हमें कोई रुकावट ना हो। निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, फसल की प्रारंभिक

0: अवस्था में खरपतवारों का प्रकोप अधिक रहता है। खेत में एक दो निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से या कल्टीवेटर विधि द्वारा हम कर देनी चाहिए। हमें खरपतवार नियंत्रण निम्न रसायनों के द्वारा भी करते हैं। एट्राजीन नामक रसायन की 0.5 kg मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़कने से अधिकतर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बाजरे की खेती में बीमारियां आती हैं तो हमें समय समय पर उनका निदान भी कर देना चाहिए। हरित बाली रोग यह फफूंद द्वारा पैदा होने वाला रोग है। इसके प्रभाव से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। यह बीज और मिट्टी दोनों के द्वारा फैलती है। अतः इस रोग के निदान के लिए हमें फसल पर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 का घोल बनाकर 800 से 900 लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए। अगर लगातार बादल छाए रहें तो 10 दिन के बाद हमें दोबारा छिड़काव करें। कंडुआ रोग यह कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग के आक्रमण से दानों के स्थान पर काला काला चूर्ण भर जाता है। इस रोग का आक्रमण फूल आने के समय होता है। इसके निदान के लिए प्लांट वैक्स व व्हाइट वैक्स का छिड़काव करना भी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। अरगठ रोग कवक द्वारा फैलने वाली यह बाजरे की एक भयंकर बीमारी है। इसका प्रभाव बाजरे की संकर किस्मों पर अधिक पाया जाता है। इस बीमारी को चैपा या छिपका आदि नामों से भी जाना जाता है। बीमारी का प्रकोप बाजरे की बालियों में फूल आने के समय होता है। इसके निदान के लिए 0.2% जीराम या 0.05% डाइफोल्टान के घोल का छिड़काव बाली निकलते समय वह दूसरा छिड़काव 10 दिन के बाद करना चाहिए। बाजरे के खेत में कीट भी आते हैं तो उनका भी हमें रोकथाम कर देनी चाहिए समय समय पर। बाजरे की फसल में कीट पतंगों से अधिक क्षति पहुंचती है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए कीटों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। नंबर एक जो दीमक, जिस खेत में दीमक लगने का भय हो उसमें बुवाई के समय 5% BHC या अथवा 5% हेप्टाक्लोर 20 से 25 kg पर हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय कूड़ों में डालना चाहिए। तने की मक्की, इनकी गिरारें अथवा सूढ़ियां पौधों की पलवार को प्रारंभिक अवस्था में काट देती हैं जिससे पौधा सूख जाता है। 1.25 लीटर थायोडान को 800 लीटर में घोल बनाकर प्रभावित फसल पर छिड़कना चाहिए। नंबर 3 टिड्डा एवं फड़का। टिड्डी रोग का प्रकोप आगरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा आता है। इस कीट की रोकथाम करना अति आवश्यक है। 2 से 5वीं स्टेज पर यह नुकसान पहुंचाता है। इसका जो निदान है मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। मेलाथियान 5% पाउडर का 25 kg पर हेक्टेयर की दर से हमें इसका छिड़काव करें। जो हमें लास्ट में जो उपज प्राप्त होती है बाजरा की फसल की यील्ड प्राप्त होती है वो देसी प्रजातियों से 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है। हरा चारा जो 150 से 200 kg पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। संकर जातियों से 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर हमें दाना प्राप्त होता है और 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर हमें हरा चारा प्राप्त होता है। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: साथियों, अभी बाजरे की उन्नत खेती के विषय में बड़ी ही उपयोगी जानकारी दे रहे थे प्रेमपाल जादौन जी। उम्मीद है हम आप इस जानकारी से बाजरे की उन्नत खेती जरूर करेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो साथियों, मौसम विभाग के अनुसार अभी बादलों और जो सूरज की लुका छुपी है ना, ये यूं ही चलती रहेगी। हल्की फुल्की बारिश भी होगी और तापमान जो

है वो लगातार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर बीते हुए 24 घंटों के तापमान की बात की जाए तो हमारे शहर का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 29 डिग्री सेल्सियस। और कल भी अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस ही बने रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथियों, मौसम चाहे जो हो, तापमान चाहे जो हो, पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। इसलिए हमेशा अपना और अपने पशुधन का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बीमारियां तो जानते ही ज़्यादा पनपती हैं, गंदगी ज़्यादा फैलती है, इसलिए साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अब चलिए हमारे साथ आनंद लीजिए एक और प्यारे से लोकगीत का।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है, ये वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सोनम चतुर्वेदी, आपके अपने आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल की साथी। कार्यक्रम मजदूर मंडल में सभी श्रोताओं का स्वागत है और शत शत नमन है उन अमर शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम ऋणी हैं उन शूरवीरों के जिनसे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। साथियों, आज है 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस, जिसे पूरा देश मना रहा है। कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रोताओं एवं समस्त देशवासियों को आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई केवल एक तारीख नहीं, ये हर उस मूल्य की याद है जिसके लिए वीरों ने अपना जीवन दे दिया, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन मातृभूमि के शूरवीरों के अदम्य साहस और बल के साथ दुश्मनों को कारगिल से खदेड़ कर तिरंगा लहराया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने, मातृभूमि की रक्षा में समर्पित हमारे वीर जवानों पर पूरे देश को गर्व है और हमेशा रहेगा। साथियों, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिनों तक सैन्य संघर्ष होता रहा। दोनों देशों में परमाणु परीक्षण के कारण तनाव बढ़ गया, जिसे शांत करने के लिए फरवरी 1999 में दोनों देशों के लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया, लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्ध सैनिकों को

छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन वज्र रखा। इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़कर भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान का विचार था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिले। इन घुसपैठियों की नियोजित रणनीति का जब पता चला तब भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े स्तर पर की गई है और भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2,00,000 सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेजा। साथियों, इस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और करीब 1400 घायल हुए थे। ये युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। हमारे भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में दुश्मनों को पराजित कर कारगिल से खदेड़ कर और तिरंगा लहराया। आज का दिन भारत की सेना के साहस और बलिदान को समर्पित है। इसे हम हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, इन वीर शहीदों को याद करते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, हमारी धरती वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण से प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़, हानिकारक रसायन, हरे वृक्षों की कमी और अधिक शहरीकरण से जंगलों की कमी होती जा रही है, जिससे धरती की नमी कम हो रही है और तपन बढ़ रही है। इस विषय को विस्तार से जानते हैं वार्ता में। वार्ता तपती धरती जिम्मेदार कौन, वार्ताकार असीम आनंद से। पर इससे पहले हमारे सभी श्रोताओं के लिए आज का प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आगरा के रावतपाड़ा क्षेत्र में स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर भक्तों के लिए प्रातः कितने बजे से रात्रि कितने बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। आगरा के रावतपाड़ा क्षेत्र में स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर भक्तों के लिए प्रातः कितने बजे से रात्रि कितने बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है?
1: धरती क्या है? धरती एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जहां पर पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु 15 अरब वर्ष आंकी गई है। पृथ्वी पर हमें मानव, पेड़ पौधे, फल फूल आदि सभी मिलते हैं, जो अन्य किसी ग्रह पर नहीं मिलते। इस कारण पृथ्वी सभी से अलग है। दूसरा, धरती का सबसे बड़ा साथी पर्यावरण। इस कथन में कोई दो राय नहीं कि हमारी धरती का सबसे बड़ा साथी पर्यावरण है। ऋतुओं का बदलना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, स्वच्छ वातावरण, पर्वत, हवा, पानी, ये सभी धरती पर जीवन के मुख्य कारण हैं। साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी भी पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाती है। यदि हम आसपास के वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, विभिन्न प्रकार से प्रदूषणों से वातावरण को गंदा करेंगे, तो यह सब हमारी धरती के लिए व वातावरण के लिए हानिकारक होगा और इसका भुगतान हम वर्तमान में निरंतर कर रहे हैं। भविष्य में इसके और विनाशकारी प्रभाव हमारे सामने आएंगे यदि हमने स्वयं में सुधार नहीं किया और पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाया। क्षितिजल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से मिलकर ही इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, मानवरण का, पर्यावरण का निर्माण हुआ है। हम यदि इसे सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे तो हमें इसका परिणाम सकारात्मक मिलेगा। यदि हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत विनाशकारी व भयंकर होंगे। तीसरा, पिछले 500 वर्षों में होने वाला पर्यावरण परिवर्तन। यदि हम गहराई से जांच करें तो हम देखेंगे कि पिछले 500 वर्षों में पर्यावरण परिवर्तन की रफ्तार धीरे धीरे प्रदूषण से प्रदूषण की ओर बढ़नी शुरू हो गई थी। पिछले लगभग 200 सालों में प्रदूषण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। पिछले 50 वर्षों में प्रदूषण की स्थिति दिन दुनी रात चौगुनी की गति से बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से मानव आज जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहा है, वह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। प्रदूषण के हर क्षेत्र में हम आगे खतरनाक स्थिति में जाते जा रहे हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण आदि। फोर्थ, प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन का कारण एवं महामारी का कारण। धरती का तापमान बढ़ने से मौसम में निरंतर बदलाव आ रहा है। इन बदलावों

0: से लगातार बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा सर्दी होना, निरंतर वर्षा होना या ज़्यादा गर्मी होना, इस बात का निरंतर सूचक है कि प्रदूषण का प्रभाव वायुमंडल पर अत्यंत नकारात्मक असर डाल रहा है। अधिक आबादी की वजह से भारत पर यह खतरा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रहा है। विद्वान लोग, वैज्ञानिकों को तो इस विनाश का भास हो चुका है, परंतु आम जनता को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से नदियाँ सूख जाएंगी, ग्लेशियर लगातार पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। भीषण तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, आंधी आने से धरती की स्थिति व मानव की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं, जो करीब 7,26,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ग्लेशियर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सभी नदियों का जन्म इन्हीं ग्लेशियरों व पर्वतीय इलाकों से ही होता है। इनका तेजी से पिघलने का कारण भी प्रदूषण है। पांचवा, पृथ्वी पर प्रदूषण को कम करने की दिशा में प्रयास। आज विश्व में प्रदूषण को कम करने की दिशा में लोग, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं व सरकार निरंतर सक्रिय हैं। इसके लिए पिछले लगभग 47 वर्षों से 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस का प्रारंभ 1970 में पहली बार एक अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए किया गया था। पृथ्वी दिवस के सफल आयोजनों व प्रयासों का पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के जो भी कार्य हुए, उसकी अपेक्षा वैज्ञानिक विकास, नित नए वैज्ञानिक प्रयोग, युद्ध, अंधाधुंध विकास, गाड़ियों का निरंतर बढ़ना, प्रदूषण बढ़ना, यह सब पर्यावरण को और अधिक प्रदूषित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या एक विस्फोट के रूप में हमारे सामने आई है। यह भी प्रदूषण के एक मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या बढ़ने से पेड़ पौधे निरंतर कटते जाते हैं, गंदगी बढ़ती जाती है। कहते हैं मानव जहाँ जाता है, वहाँ का वातावरण स्वतः ही प्रदूषित हो जाता है। अतः जनसंख्या को रोकना ही हमारे लिए परम आवश्यक है। अंतिम, प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? निश्चित रूप से इस व्यापक स्तर पर प्रदूषण के जिम्मेदार हम स्वयं को ही मानते हैं। कहते हैं एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, लेकिन यहाँ एक ही सुधरने को तैयार नहीं तो दूसरा कैसे सुधरेगा? अपनी गलतियों का भुगतान हम स्वयं ही करेंगे तथा आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका भुगतान करना होगा। हमें सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना होगा। धरती को कम से कम गंदा करें, पेड़ पौधे उगाएं, पेड़ों को ना काटें, पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित रखें, तालाब, पोखर, कुएं पहले की भांति बनवाएं, जल संरक्षण करें, आग से चमड़ा आदि न जलाएं जिससे अधिक धुआं ना हो। यदि हमें स्वस्थ रहना है, हमें इस ओर ध्यान देना ही होगा। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदूषण हमारे जी जान के लिए और अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। धन्यवाद।
1: साथियों, हमें वार्ताकार असीम आनंद जी बता रहे थे कि तपती धरती का जिम्मेदार कौन है, वार्ता तपती धरती जिम्मेदार कौन के माध्यम से। और अब समय है आपको पूछे गए आज के प्रश्न का उत्तर बताने का। हम प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। आगरा के रावत पाड़ा क्षेत्र में स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर भक्तों के लिए प्रातः कितने बजे से रात्रि कितने बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रातः 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक निरंतर खुला रहता है। श्रोताओं, अब समय है ज्ञान सागर का। तो आज के ज्ञान सागर में शामिल है अपने शहर आगरा का श्री मनकामेश्वर मंदिर, जिसका अर्थ है मन की कामना पूरी करने वाला। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे और श्रद्धा से पूजा करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। श्री मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना

0: घटना द्वापर युग की मानी जाती है। जब भगवान शिव श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रज जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। द्वापर का यह शिवलिंग पूरी तरह चांदी से ढका हुआ है। श्री मनकामेश्वर मंदिर में महादेव के अलावा मंदिर परिसर में सिद्धेश्वर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के शिवलिंग और बजरंग बली की प्रतिमा दक्षिण मुखी भी स्थापित है। ये मंदिर ताजमहल से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के पास है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, अब समय है आज के सेहतनामा का। आज के सेहतनामा में शामिल है बरसात के मौसम में हम कैसे सावधानियां बरतें कि हम स्वस्थ रहें और बच्चों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले साथियों, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसके बाद बच्चे बुजुर्गों का। बरसात के महीने में हम देखते हैं कि जगह जगह गंदगी फैली हुई है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है, हमारे घर के आसपास भी पॉलीथीन नालियों में डाली जाती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन पॉलीथीन को स्वयं कम से कम प्रयोग करें और नालियों में न डालें, गंदगी न फैलाएं। जैसे कि हम किसी फल का सेवन कर रहे हैं तो उसके छिलके भी हमें एक निश्चित स्थान पर और निश्चित कूड़ेदान में डालना चाहिए। इससे हम उस गंदगी को बचा सकते हैं जो कि हमारे घर और आसपास फैलती है, जिसकी वजह से कीटाणु फैलते हैं और बीमारियां फैलती हैं। साथ साथियों, इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य में शामिल करना होगा साफ सफाई और शाम के समय सोते समय सूती वस्त्र, उसके साथ में बुजुर्गों का विशेष ध्यान। आप कोशिश करें कि बरसात में सूती वस्त्रों का प्रयोग करें, सोते समय फुल वस्त्रों का प्रयोग करें, मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और यदि मच्छरदानी आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए गांव में यदि रहते हैं तो नीम की पत्तियां जला के धुएं से उसकी रक्षा की जा सकती है। और अब लेते हैं एक अंतराल।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, आज से 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने के लिए हमारी सभी बहनें पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। सावन के महीने में ज़्यादातर

बहनें अपने मायके जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपने भाई बहनों के साथ झूला झूलती हैं, रक्षाबंधन मनाती हैं। तो इसकी शुरुआत हो रही है 28 जुलाई से। हम कह सकते हैं कि सावन का महीना हमारे काफ़ी करीब है और ये सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। तो क्यों न भगवान शिव को समर्पित इस सावन के महीने में शिव की भक्ति का भी आनंद लिया जाए।

साथियों, इतने समय में भगवान शिव की भक्ति में भक्तमय होकर हम ये भूल ही गए कि कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है। तो कार्यक्रम की साथी सोनम चतुर्वेदी को कार्यक्रम मजदूर मंडल में अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

0: व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted that communities in the country have long worked together while singing songs, stressing that this practice strengthened unity and made collective efforts more joyful and stress-free.
2: हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना और उस काम के साथ गीत भी बना देना, जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना, ये हमारे देश की बड़ी विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था।
1: Highlighting the role of solo travel, the Prime Minister said many participants began their journeys as individuals but returned as one family through the My Bharat initiative. He described this transformation as one of the program's key achievements, turning personal experiences into a shared sense of belonging and national unity. Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the 26th of July is a date that does not require calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Rajnath Singh said that Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. He said the bravery displayed by the armed forces during the conflict created a legacy that continues to be a source of pride for every Indian. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Later, speaking to the media, Mr. Joshi said he is currently holding review meetings to gain a comprehensive understanding

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कारगिल विजय दिवस पर केंद्रित वार्ता, भारतीय पराक्रम का जीवंत दस्तावेज कारगिल। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमी आधार निडर।
1: या तो युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के सूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। तभी से इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1,300 से ज़्यादा घायल हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा जमाया था वहां पर बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से भी हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। 20 वर्षों से हम इसी दिन अपने जांबाज सैनिकों के बलिदान और बहादुरी के प्रति निरंतर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन है समर्पित उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। भारत के वीर जवानों ने जहां अपने रण कौशल से शत्रु सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं पूरे देश की जनता जनार्दन भी हृदय की गहराइयों से इन वीर सपूतों की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना और उत्साहवर्धन करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। पूरे देश में रेलवे स्टेशनों और सड़कों

0: के निकट से गुजरते सेना के ट्रकों और रेलगाड़ियों में सवार सैनिकों के स्वागत करने के लिए पूरे देश के नर नारी और बाल वृद्ध उमड़ पड़े थे। बहनों ने अपने वीर सैनिक भाइयों के तिलक किया, हार पहनाए और जय घोष के साथ उनको विदा किया। यह वह दौर था जब भारत भूमि के बच्चे बच्चे की भुजाओं में फड़कन थी और सैनिकों के साथ देश के हर नागरिक की धड़कन थी। सभी लोग जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की भावना से अभिभूत होकर एक स्वर से गा रहे थे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई के महीने में कश्मीर की पहाड़ियों का ऐसा युद्ध था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को सेना को पार नहीं करना था और दुश्मन को ठिकाने लगाना था। ये बहुत संवेदनशील मामला था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलते हुए भारतीय सरकार और भारतीय सेना दुश्मन को इस दुर्गम क्षेत्र से बाहर निकाल रही थी, जिसने सियाचिन के ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करके हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर दिया था। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध को, जिसे विदेशी मीडिया ने मात्र 2 देशों का सीमा संघर्ष कहकर के प्रचारित किया था, उस युद्ध में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को इस तरीके से मार भगाया कि पूरे संसार में उनकी विजय धुंधुभी बज उठी। देश की 1 इंच भूमि पर भी परतंत्रता कैसे बर्दाश्त हो सकती है, जबकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। भारतीय सैनिकों ने कारगिल में इस मूल्य को बखूबी चुकाया है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके जाने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा बलिदानी जांबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। इन वीर बांकुरों में कैप्टन विक्रम बत्रा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कि हम ये मान सकते हैं कि जिन्होंने वीरता और बलिदान की इस फेहरिस्त को इतना लंबा कर दिया कि जो अनवरत जारी है और आज भी बलिदानों का क्रम शौर्य और साहस के साथ निरंतर चल रहा है। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में स्वयं लिप्त था। बाद में वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार भी किया। यह युद्ध ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक था। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही देश परमाणु संपन्न थे, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं तो साहस, बलिदान, राष्ट्रप्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बातों और जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कारगिल विजय दिवस पर केंद्रित वार्ता, भारतीय पराक्रम का जीवंत दस्तावेज कारगिल। वार्ताकार थे डॉ. अमी आधार निडर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
8: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
7: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
8: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है।
8: एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
7: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।

0: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
1: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आज बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: प्रदेश में पिछले दिनों चलाए गए मां के नाम एक पेड़ अभियान की प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति आभार जताया है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का जिक्र पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की बड़ी सफलता का सम्मान है। वहीं बिजनौर जिले की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर्बल टी तैयार किए जाने की तारीफ किए जाने पर समूह की महिला सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। जैसे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, इससे लग रहा है कि जैसे जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सबके मन की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवारजनों को लाभ मिलेगा। कैशलेस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री योगी ने कहा कि बदलते दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की जरूरत है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य रखते हैं। हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको पारंगत करेंगे। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। बदायूं जिले के उजानी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले सरकार ने नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी कमान आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साल 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वांचल में कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये क्रम 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी वतन के वीर। प्रतिभागी कवि हैं शिखा सिंह, मोहित वर्मा, अतुल पुंढेर। इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं ऐलेश अवस्थी।
7: मरते भी गए, कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने।
8: क्या बात है।
7: नमस्कार, प्रणाम। मैं कवि ऐलेश अवस्थी, आज आगरा प्रसार भारती से कारगिल विजय दिवस पर हम एक काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, उन शहीदों की शौर्य गाथा को गाएंगे। और आज हमारे साथ कवियों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय अतुल पुंढीर जी, जो एटा से हमारे मध्य आए हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे बाईं तरफ बैठी हुई हैं शौर्य गान करने वाली भारत की बेटी आदरणीय शिखा सिंह जी, जो कानपुर की बूलेवासी हैं लेकिन वर्तमान में आगरा में पदस्थ हैं। आपका स्वागत है इस काव्य गोष्ठी में। और वर्तमान में भारत का वीरस गाने वाला एक चेहरा जो आपको अमूमन देखने को मिल जाएगा और बहुत फेमस शहरों में से एक हो गया है, उसकी वाणी अपने आप में टंकार है, अर्जुन के गांडी जैसी टंकार लगती है, वो युवा हमारे मौजूद है, उसका नाम है मोहित सक्सेना जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मोहित जी, स्वागत है आपका। और आइए बिना देर किए इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। कारगिल में 527 जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद हमने विजय प्राप्त की उन चोटियों पर, उन दुर्गम इलाकों पर। हमारे वीरों ने दुश्मन देश के तमाम सैनिकों को, तमाम आतंकवादियों को मार के भगा दिया और पुनः पदस्थ हुए, वहां पर तिरंगा झंडा लहराया। इसके लिए हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसी व्यवस्था में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई आदरणीय अतुल पुंढीर जी को निमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और

0: अपना काव्य पाठ वीरों को नमन के साथ प्रारंभ करें। आदरणीय अतिल पुंडीर,
1: नमस्कार साथियों, आज सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए एक घनाक्षर देखिए, विजय दिवस आज उनको नमन करें, सौर की बना के जो गए नई कहानियां। विजय दिवस आज उनको नमन करें, सौर की बना के जो गए नई कहानियां। शत्रुओं के मान को मिटा के खंड खंड किया, दिखलाया कितनी है खून में रवानियां। मुंह के इतिहास कभी वीरता का होता नहीं, काल के भी बच्च पे मिलेंगे ये निशानियां। एक जिंदगाने मिली देश पे लुटा दो से, लौट के दोबारा नहीं आती ये जवानियां। लौट के दोबारा नहीं आती ये जवानियां। और इसी श्रृंखला में एक और देखिए, कारगिल चोटियां हैं आज भी गवाही देती, लाल भारती के वे लड़े थे बड़ी शान से। कारगिल चोटियां हैं आज भी गवाही देती, लाल भारती के वे लड़े थे बड़ी शान से। एक एक वीर वहां सैकड़ों का काल बना, जान को लगा के दांव लड़े थे जी जान से। शत्रुओं का सारा छल धूल में मिला दिया था, वीरता दिखाई कैसी पूछो आसमान से। कायरों ने ऐसा भला सोच भी लिया था कैसे, चुपके से आके जीत लेंगे हिंदुस्तान से।
2: बहुत बढ़िया,
1: आके जीत लेंगे हिंदुस्तान से। और देखिए एक मुक्तक, कोई सपनों को जीता है कोई अरमान को लेकर। कोई सपनों को जीता है कोई अरमान को लेकर, कोई सजदे में बैठा है कोई भगवान को लेकर। नमन उसको करो उसकी तपस्या सब पे भारी है। नमन उसको करो उसकी तपस्या सब पे भारी है, जो सरहद पर खड़ा है दिल में हिंदुस्तान को। सरहद पर खड़ा है दिल में हिंदुस्तान को लेकर। और देखिए, शहीदों की मिले गर्वज तो वो चंदन हमारा है।
2: बहुत बढ़िया,
1: शहीदों की मिले गर्वज तो वो चंदन हमारा है। हिफाजत से इसे रखना वही कुंदन हमारा है। वतन के वास्ते जो सर कटा देते हैं हंस करके, वतन के ऐसे वीरों को सदा वंदन हमारा है।
2: वतन
1: के ऐसे वीरों को सदा वंदन हमारा है। और देखिए, शहीदों को अगर हंसकर कटाना सर नहीं आता।
2: वाह,
1: शहीदों को अगर हंसकर कटाना सर नहीं आता, तो खुशियों का कभी ऐसा यहाँ मंजर नहीं आता। अजब तासीर है इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसी, कि वीरों का कभी भी सर यहाँ झुक कर नहीं आता। वीरों का कभी भी सर यहाँ झुक कर नहीं आता।
0: बहुत अच्छे,
1: हिम से आच्छादित पर्वत पर वो सीना ताने चढ़ता है। हिम से आच्छादित पर्वत पर वो सीना ताने चढ़ता है। बंदूकों से गोली बरसे फिर भी वो आगे बढ़ता है। भारत के वीरों का साहस शब्दों से भी ना वर्णित हो। भारत के वीरों का साहस शब्दों से भी ना वर्णित हो। जब तक दमनी में शौर्य है अरिदमन हेतु वो लड़ता है। और आगे देखिए, तासीर है ऐसी भारत की मन में यूं साहस रखता है। तासीर है ऐसी भारत की मन में यूं साहस रखता है। भारत माँ का जो प्रहरी है वो पहरों पहर न थकता है। इतिहास गवाह है साहस का, मेरे देश का सैनिक ऐसा है। जिस दिन जिद पर आ जाएगा आकाश नाप भी सकता है। जिस दिन जिद पर आ जाएगा आकाश नाप भी सकता है।
0: देखिए,
1: सुरक्षित होली दिवाली सुरक्षित ईद आती है। देखिए, हमारे शहर के जब सरहद पर खड़े होते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सुरक्षित होली दिवाली, सुरक्षित ईद आती है, खड़े सीमा पे है प्रहरी तभी उम्मीद आती है। सुरक्षित होली दिवाली, सुरक्षित ईद।

0: आती है, खड़े सीमा पे है प्रहरी तभी उम्मीद आती है, खड़े सरहद पे वो आंखों में रातें काट देते हैं,
1: आहा,
0: खड़े सरहद पे वो आंखों में रातें काट देते हैं, किसी मखमल के बिस्तर पर तुम्हें तब नींद आती
1: हाँ,
0: है,
1: हाय हाय
0: किसी
1: हाय,
0: मखमल
1: बढ़िया,
0: के बिस्तर
1: वाह
0: पर तुम्हें तब नींद
1: नींद
0: आती है।
1: आती है।
0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे ये थे अतुल पुंडीर जी, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कहीं लद्दाख में, कहीं सियाचिन, तो कहीं कारगिल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे जवान खड़े हैं, तब हम यहाँ पर चैन से सो पा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा पा रहे हैं, और इस स्टूडियो में बैठ के कविताएं पढ़ पा रहे हैं। एक बार उनके लिए जय हिंद बोलिए और तालियां बजाइए। इसके बाद जब कारगिल में युद्ध चल रहा था तो हमारे हजारों जवान दुश्मनों के दांत खट्टे करने में लगे थे, लेकिन वहां दो बेटियां भी थीं। एक बेटी थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और दूसरी बेटी थी कैप्टन यासिका हटवाल त्यागी। ये दो बेटियों ने भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। तमाम जो भारतवर्ष को उपलब्धियां आई तो वहां पर बेटियों का भी उतना ही हिस्सा जितना बेटों का है। आज इस गोष्ठी में भी एक बेटी है जो शौर्य गाती है। आइए मैं चार पंक्तियों के माध्यम से उस बेटी को बुलाता हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। एक बार जय हिंद के साथ बुलाता हूं आदरणीय शिखा सिंह जी।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को शिखा सिंह उर्जिता का सादर प्रणाम। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ये काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है, तो प्रथम चार पंक्तियां कारगिल विजय के अनेकों अनेक नायकों के मध्य एक नायक कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी प्रथम पंक्तियां समर्पित करती हूं।
1: स्वागत।
2: कि देश जो सशक्त देश भक्त वाला रक्त चाहे बूंद बूंद निज बिन तोल मोल दीजिए, सैन्य वस्त्र धार अस्त्र शस्त्र के प्रहार से शत्रुओं की वीरता के धागे खोल दीजिए, सिंह सा दहाड़ अरि वक्ष फाड़ फाड़ के हिम शिखरों में आज आग घोल दीजिए, हिम शिखरों में आज आग घोल दीजिए, और शेर शाह विक्रम की भांति थाम राष्ट्र ध्वज, जीत को ये दिल मांगे मोर बोल दीजिए।
1: दिल मांगे मोर, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और अगली चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ उन सैनिकों को जो एक संकल्प के साथ देश की सीमा पर लड़ने जाते हैं, और जब लड़ते लड़ते शहीद होने लगते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर से अंतिम प्रार्थना क्या करते हैं कि उजड़ा सिंदूर और टूटी चूड़ियों से जुड़ी किसी की अधूरी पहचान छोड़ आया हूँ, झुर्रियों से भरे उन वृद्ध चेहरों की कहीं गुम हो गई जो मुस्कान छोड़ आया हूँ, राखी का वचन कहीं मित्रता का भाव कहीं मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ, मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ, और प्रभु एक बार फिर भेज दो धरा पे मुझे रोता हुआ पीछे हिंदुस्तान
1: छोड़ा।
2: अगली चार पंक्तियां उन्हीं सैनिकों के, उन्हीं शहीदों के बच्चों को समर्पित करती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि युद्ध क्षेत्र में जो बढ़े पग वीर सैनिकों के शत्रुओं के लिए मृत्यु द्वार खोलने लगे, कांपता था शत्रु देख सैनिक के साहस को वो गगन और ये धारा भी डोलने लगे, देख शव पिता का तिरंगे में लिपट आया वीरता का भाव फिर बच्चे तोलने लगे, और नन्हे नन्हे हाथ पहुँच खुद से ही आंसुओं को थाम के तिरंगा जय
1: हिंद।
2: अगली चार पंक्तियां उन शहीदों की वीर वधुओं को समर्पित करती हूं, और क्या कहना चाहती हैं वो इस देश को कि विजयी तुम ही हो यही साहस पति को देके हारते से युद्ध का रुझान मोड़ती हूँ मैं, बन के अदृश्य शक्ति निज सैन्य बल संग शत्रु सैनिकों का अभिमान तोड़ती हूँ मैं, तीन रंग की ध्वजा में एक रंग लाल लाल अपने सुहाग का निशान जोड़ती हूँ मैं, लाल परिधान लाल बिंदिया सजाओ सदा इसीलिए श्वेत परिधान
1: अच्छे।
2: ऐसी ही वीर वधुएं जब अपने बच्चों को उनके पिता से प्रेरित करके जब देश की सीमा पर लड़ने भेजती हैं, और उनके बच्चे उनके बेटे जब शत्रुओं का संहार करके वापस अपने घर आते हैं, तो वो वीर वधुएं अपने शहीद पति की तस्वीर से क्या कहती हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जैसा गर्भकाल पाके कुरुक्षेत्र को उजाड़ कर आया है, कृष्ण द्वारा पूतना के वध की कथा सुनाई सारे असुरों को निष्प्राण कर आया है, सिंह संग खेलने की भरत कथा को सुन पापियों के जबड़ों को फाड़ कर आया है, और भगत ने खेतों में जो बोई थी बंदूक वो

0: शत्रुओं की छातियों में गाड़
1: दी।
0: जैसे कि आदरणीय एलएस जी ने बताया कि 527 सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर करके इस देश की रक्षा करी और कारगिल में हमें विजय दिलाई, उन सभी को समर्पित करती हूँ और उनका शौर्य गान करना चाहती हूँ कि मरणोपरांत वीर होते नहीं श्रांत क्लांत, लिख इतिहास में वो निज नाम जाते हैं, उनका अदम्य तेज धार सूर्य देव यहाँ लेकर प्रकाश रोज ही ललाम आते हैं। जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं और भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
0: और यही सैनिक अपने देश के शत्रुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जब बार बार शत्रु अपनी हद भूल करके और हमारे सहिष्णुता को नजरअंदाज करते हुए जब हम पर हमला करता है, हमें क्षति पहुंचाने का है, दुस्साहस करता है, तो हमारे देश के सैनिक उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि बार बार माफ करने के बाद आखिर में शब्द भेदी बाण का चौहान नहीं भूले हैं, गालियां सुनी है शत बार किंतु थक हार चक्र द्वारा शीश की कटान नहीं भूले हैं, और खुली जो शिखा तो नंद वंश का हुआ विनाश, प्राण वो चाणक्य का महान नहीं भूले हैं, और बुद्ध की अहिंसा पूजते हैं किंतु धर्म हेतु राम जी के शर का संधान।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा
1: बात है भाई।
0: और सैनिकों के लिए कुछ और पंक्तियां रखती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
1: अद्भुत अद्भुत।
0: कराल काल दंड जो उतारे शत्रु मुंड वो, असाध्य साध साधना प्रताप है प्रचंड वो, प्रबल प्रलंब देश का आशीष है अशेष का, अनुग्रहित आशातीत गर्व है स्वदेश का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्व श्रेष्ठ सर्व मान्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए, अरिहंत बन के शत्रु अंत करते हैं अनंत तक, वीर गाथा की श्रवण प्रथा है दिग दिगंत तक, देश रक्षा मोह निर्विरोध निर्विकार है, देश मान हंता पे प्रहार पे प्रहार है, आरोप मिथ्या सैन्य दल सभी अमान्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए।
1: बहुत अच्छा।
0: अति कुटुंब की वो स्मृति विलुप्त सुप्त, करते वीरता प्रकट तो पीड़ा सर्वथा है गुप्त, अश्रु चक्षु धार्य अंक वास रक्षा कार्य है, आर्यवर्त सैन्य दल प्रभास अंगीकार है, विहीन सैन्य देश कल्पना स्वराज्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए, विशेष वेश शेष है ज्वलंत अग्नि वेश है, विहंग रंग संग जैसे गंग शंभु है, विभव विराट वक्ष में विराज धर्मराज है, विलीन धर्म लीन देश काज ही स्वकाज है, अदम्य शौर्य संपदा अमिट अभाज्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। और इस रचना की अंतिम पंक्तियों में अपने सैनिकों के लिए एक प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि श्वास सैनिकों की हे प्रभु मेरे अखंड हो, वीर वक्ष वेधने का दंड मृत्यु दंड हो, उत्तुंग सैन्य शौर्य ऐसी घोषणा को स्वागतम, शुभंकरम है सैन्य को नमाम्य हम नमाम्य हम, प्रदत्त सैन्य रक्षा को अतीव भाग्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। आभार।
1: आकाशवाणी के माध्यम से जो भी आज ये काव्य गोष्ठी सुन रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि कहीं लोगों ने आरोप लगा दिए कि युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, लेकिन देखिए युवा पीढ़ी क्या लिख रही है। ये दिनकर के वंशज हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए, जय हिंद कहिए। शिखा जी बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया। सैनिक जब शहीद हो जाते हैं, चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, तो निसंदेह हम लोग उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं, कुछ आंसू बहा लेते हैं, लेकिन जाता किसका है। कुमार मनोज जी ने इटावा के कवि हैं, क्या बढ़िया पंक्तियां कही हैं कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने नौने हालों की लंगोटियां चली गई। एक जब शहीद जाता है तो क्या जाता है उसके परिवार का, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने नौने हालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गईं। अरे ऐसा विस्फोट हुआ, एक पल भी न लगा, जाने कहां जिस्म की ये बोटियां चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं।
2: वाह वाह वाह।
1: तो एक जब शहीद जाता है, एक सैनिक जाता है, तो क्या चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे मध्य इस वक्त भारत का सबसे युवा चर्चित चेहरा जो अपने शौर्य की वाणी के लिए जाना जाता है, उसकी आवाज आवाज नहीं है, अर्जुन के गांडीव की टंकार जैसी है, उसका नाम मोहित शौर्य होता है। अपने शब्दों से हिंदुस्तान के मस्तक पर तिलक करने के लिए मैं मोहित सक्सेना को आवाज देता हूँ। आए और कविता पढ़े।
2: बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया अलेश अवस्थी जी, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आप कार्यक्रम का। आकाशवाणी आगरा केंद्र के सभी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूं।

0: कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर उन सैनिकों को याद करते हुए जैसा कि आदेश हुआ है, मैं अभी कुछ समय पहले कारगिल के एक शहीद हुए शर्मन सिंह जी ग्वालियर में मैं उनके परिवार से जाकर मिला। जब मैंने पूछा कि कैसे कोई माँ अपने लाल को कुर्बान कर देती है देश पर, उस माँ का जवाब सुनना कि उसने क्या कहा, एक सैनिक की एक शहीद की माँ ही यह कह सकती है कि आएगी विपत्ति परिवार को बचाए, घरवार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। आएगी विपत्ति परिवार को बचाए, घरवार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। कोई टोपी, कोई चोटी, कोई निजकेश, कोई अपने जमा किए विशेष को बचाएगा।
1: हाँ।
0: कौन है जो कालकूट धारण करेगा कंठ, रण मध्य बैठ रुद्र वेश को रचाएगा। और अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु कौन है जो प्राण दे के देश को
2: बचाएगा।
0: कौन है जो प्राण दे के देश को बचाएगा। शहीद हो जाता है कोई सैनिक हमारा, परिवार को दुख यह नहीं होता कि वह शहीद हुआ। निश्चित रूप से वह माँ यह चाहती है कि मेरा दूसरा बेटा होता तो उसको भी देश पर कुर्बान कर देती। लेकिन एक प्रश्न रह जाता है, उसके शव से पूछती है कि हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतलाते यह क्या विकार कर लिया है। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतलाते यह क्या विकार कर लिया है। और कैसी यह विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है।
3: हाय हाय हाय।
0: और हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया है। बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया है। यदि उस शहीद की आत्मा कहीं होगी, और विशेष रूप से शहीद शर्मन सिंह की कहानी सुनी, अन्य शहीदों की हम कहानी सुनते हैं कारगिल में जो शहीद हुए, तो एक कहानी अगर उसका जवाब होगा, अगर वे शहीद की आत्मा उनका सूक्ष्म शरीर कहीं होगा और जवाब दे सकता होगा, तो यही जवाब होगा कि सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। और तेरा पय पिया है तो हुआ है फौलाद यह, जिसम कटारों से भी कट सकता। अरे पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने। जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं।
1: हाँ।
0: जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं। और सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता। सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। पर दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। और हुआ जो शहीद मुझे मौत ने प्रणाम किया, एक बार को तो मैंने मौत को डरा दिया। और वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई, वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई। देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया। देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया। और गिरा तो भले ही पर गिरने से पहले ही, गिरा तो भले ही पर गिरने से पहले ही शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा लहरा
3: दिया।
0: और क्योंकि समय शेष है, 3 मिनट की एक कविता पढ़ता हूँ। बहन ने नाम लिया परम वीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा जी का। एक और शहीद हुए जिनसे यह युद्ध शुरू हुआ, कैप्टन सौरभ कालिया, जो पहली शहादत हुई, उनके लिए एक कविता निवेदित करता हूँ। केवल 21 वर्ष की आई थी, पहली तनख्वाह भी नहीं आई थी उनकी, और कारगिल से बुलावा आ जाता है। क्या कह के जाते हैं, कविता यहाँ से शुरू होती है। माँ से कहते हैं कि माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको।
1: हाँ।
0: दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको।
3: वाँ वाँ।
0: पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ। पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ। तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। तनख्वाह तो आई पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। बेटा वादा तोड़ गया वापस उसकी मिट्टी आई। बेटा वादा तोड़ गया वापस उसकी मिट्टी आई। और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था।
1: हाँ।
0: माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा।
3: आहा, आहा, आहा,
0: क्यों नहीं पहचान पाई होगी एक माँ अपने बच्चे के शव को देखकर, क्योंकि कुछ आया ही नहीं था आदरणीय शव के रूप में, तो एक पोटली में 20 टुकड़ों में उसका शव आया था।
1: हाँ।
0: ना आंख, ना नाक, ना कान, सब नोच कर ले गए थे पाकिस्तानी गिद्ध। माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती। माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटा
3: भूल नहीं सकती।
0: लेकिन उसमें जब कुछ मिला नहीं, घटना केवल इतनी घटी थी कि वो तो बजरंग चोटी पे गश्त लगाने के लिए गए हुए थे।
1: हाँ।
0: अरे जान अगर प्यारी होती तो पीर दिखा भी सकते थे।

0: बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं
1: हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। तो एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों पे, लगा कबाली नर्तन करने रक्त बीज नरमुंडो पे, देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया धुत्तों का, पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का, और एक निहत्ते पर सौ सौ के कई वार पर वार हुए, और इधर से भारत माँ के नब्बे दी जयकार हुए, लड़ा लड़ा और लड़ा अंत में संगीनों पर झूल गया, लड़ा लड़ा और लड़ा अंत में संगीनों पर झूल गया, भारत माता याद रही अपनी माता को भूल गया, भारत माता याद रही अपनी माता को भूल गया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, बदन में जान थी तब तक तिरंगा
2: झुक नहीं पाया,
0: बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। अंतिम चार पंक्तियों कविता का समापन करता हूँ कि फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानव

0: रुक नहीं पाया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, बदन में जान थी तब तक तिरंगा
1: झुक नहीं पाया,
0: बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। अंतिम चार पंक्तियों कविता का समापन करता हूँ कि फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी। सारी जिनेवा ट्रीटी, सारी सैनिक संधियां, सबको धता बताकर उन्होंने जो जुल्म किया, फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी। हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी, दांत प्लास से खींच लिए और गर्म सलाखें कानों में, मानव का कोई लक्षण नहीं दिखा हैवानों में, आंख निकाली चमड़ी खींची मांसाहड़ को छोड़ गया, आंख निकाली चमड़ी खींची मांसाहड़ को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया, उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा।
1: वाह वाह,
0: तो नमन नमन है वीर धरा का मान बचाने वाले, नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान
1: बचाने वाले। वाह मोहित,
0: बहुत धन्यवाद। आइए उस शख्सियत की ओर चलते हैं हम लोग जो कि इतनी देर से इस कार्यक्रम का प्रखर और सफल संचालन कर रहे हैं, आगरा की धरती से निकलकर पूरे देश में हास्य और ओज के लिए इस आगरा और इस क्षेत्र का नाम कविता के पटल पर रेखांकित करने वाले मेरे बड़े भैया आदरणीय एलेश अवस्थी जी को बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रण देता हूँ कि वे आए और अपना कविता पाठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए।
2: आज इस कार्यक्रम में मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य पाठ किया, प्रणाम है आपको। और सबने बड़ी वीरस की कविताएं पढ़ी, जोश के साथ कविताएं पढ़ी, तो मैं इन चार पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं कि कवियों को भी कम ना आका जाए। लाहौर से रावलपिंडी तक भारत का ध्वज फहरा देंगे, शब्दों के तीरक मान चला यमराज से भेंट करा देंगे, और ले पाकिस्तान चुनौती है तू एक बार मैदान में आ, अरे सेना तो दूर की बात तुझे भारत के कवि हरा देंगे।
0: हम
2: लोग भी बड़ा आनंद वाले लोग हैं कि दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुए फलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं, ऐ देश के दुश्मन सुनो ये आखिरी चेतावनी है, इस भूमि ने गीदड़ नहीं सब शेर के सावक
0: हैं।
2: दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे, कि दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे, जो एक कदम भी बढ़े अगर सीमा पर बलवा कर देंगे, और तू फिक्र न करना भारत माँ तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं, तू फिक्र न करना भारत माँ तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं, आ गए किसी दिन जिद पर तो सब जलवा जलवा कर देंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनी कुर्बानी देकर भी इस हिंद का दिल दुखने न दिया, थम रही नब्ज रुक रही श्वास पर विजय का रथ रुकने न दिया, अरे रिस गया रक्त सारा तन से धड़कन भी मंद हुई, लेकिन जब तक सीने में जान रही तब तक झंडा झुकने। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, झेलम की रवानी लिख डाली, और पीकर चिनाव के पानी को उन मतवाले दीवानों ने निज शीश चढ़ा भारत माता के नाम जवानी
0: लिख डाली।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: कविता पढ़ता हूँ कि चाहे शरीर से रिस जाए इस

परीक्षा के, चाहे अनुबंध बिखर जाएं जीवन की कठिन परीक्षा के, चाहे जीवन काटना पड़े गमगीन सहारे भिक्षा के, चाहे शरीर निर्जन होकर वसुधा परवाज बिखर जाए, चाहे यह मस्तक भी गर्दन से कटकर नीचे गिर जाए, चाहे पत्नी के माथे पर शोभित सिंदूर चला जाए, चाहे एक बूढ़ी माता की आंखों का नूर चला जाए। क्या कह गए वो कि जो आतंकी उन्मादी हैं उन सब की खाल उतारेंगे, इस केसर वाली क्यारी में अब विषधर ना फुंकारेंगे, श्वानों की जिह्वा खींचेंगे, सर्पों के दंश तोड़ देंगे, कुटिलों की आंखें फोड़ेंगे, गिद्धों के पंख मोड़ देंगे,

0: कसम हमें ए भारत माँ, है कसम हमें तेरी रक्तिम चूनर को धानी कर देंगे हम अपनी भारत माता को जग की महारानी।
1: क्या बात है, वाह।
0: हम अपनी भारत माता को जग की महारानी कर देंगे, पूरी दुनिया में अब भारत माता की जूती बोलेगी, ब्रह्मोस का जादू बोलेगा, राफेल की तूती बोलेगी।
1: वाह वाह वाह।
0: तो हम भी है यहाँ जो सुन रहे हैं उनके लिए, हम भी है यहाँ तुम भी हो वहाँ, फिर हो करके निर्भय बोलो अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वतन के वीर थीम को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आकाशवाणी आगरा की तरफ से प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में मैं आगरा का बेटा कवि अलेश अवस्थी और मेरे साथ एटा से अतुल पुंडीर जी और शिखा सिंह उर्जिता जी और मोहित सक्सेना जी, हम सब लोगों ने आज देशभक्ति के लिए, उन वीर जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए अपनी अपनी कविताएं रखी। और आकाशवाणी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी वतन के वीर। प्रतिभागी कवि थे शिखा सिंह, मोहित सक्सेना, अतुल पुंडीर, और काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे अलेश अवस्थी। इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब आइए सुनते हैं इश्कियां फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

अभी आप सुन रहे थे मिलन फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा है शिव हरि ने।

अभी आपने सुना किस्मत फिल्म का गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में। एसएच बिहारी की शब्द रचना को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंकज उधास और

मोहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज में। इंदिवर के गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

गीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया।

0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो

0: ये भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और

0: आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9.

0: समझना है।
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल से हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुदकफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खा वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तावुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1 को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सख्र फख्र से बुलंद हुआ है। कैच द रैन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्कगीर मुहिम जारी है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागो चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आज़ादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीज़ों से नवाजें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तसव्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख

0: गांवों की यात्रा करें।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तसव्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाइस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केउनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाइस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुक्काम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समंदरी सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नस्ब किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
3: ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषि कांत सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इसलाहत के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। रेडियोस्कोप, द नेशनल साइंस मैगजीन प्रोग्राम।

0: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। In today's prestigious program of the Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
0: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matra 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
1: Dr. Varsha ji began her training in vocal

0: म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी. शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मेस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी. अलॉन्ग विथ बींग अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, शी ऑल्सो होल्ड्स द प्राउड डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट फीमेल संतूर प्लेयर ऑफ द कंट्री टू बी इन्वाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर संतूर कॉन्सर्ट्स अब्रॉड.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है.
0: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट कल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, डॉक्टर वर्षा जी हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एकोलेट्स, इंक्लूडिंग द फर्स्ट लेडी अवार्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एमपी गवर्नमेंट शिखर सम्मान ऑल्सो.
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है. संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं. अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है.
0: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. When her fingers dance on the 100 strings of santur, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat जो त्रिताल में है, मध्यगत एक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित.
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झिंझोटी. इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्यगत इन एक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल. Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी ने अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें भी आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रिसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस आफ्टर द आलाप शी विल प्रेजेंट अ मध्यगत इन रूपक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल।

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दैट वॉज अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग प्रेजेंटेड बाय विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान

0: करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion